0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती।
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट।
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती?
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट?
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
1: Welcome back, viewers. This hour, you're watching The Burning Question on India Today with me, Sriya Kundu, and we will get right into breaking news that's coming in. This is with regards to the quota conversion case that has now snowballed into a major political controversy as well, with Bajrang Dal alleging the accused possessed as much as over 40,000 obscene videos, ran a religious conversion network and racket, and had links to Pakistan. The group claims Hindu women were targeted through Telegram, Snapchat, Discord, all of these platforms, and has in fact demanded a national level probe now into what it calls a much larger conspiracy that doesn't restrict itself just to quota. Police, however, say that the investigation is still underway. Investigators will confirm the accused was arrested under the BNS and IT Act and that obscene content was recovered. But they added that no evidence of religious conversion or circumcision or even a Pakistan link has been established so far. Digital evidence is being examined. Officials say further conclusions will depend on the ongoing investigation. So this is the details that we're now getting inside the quota conversion factory. What lay was a shocking park-back conversion plot that's being alleged so far, but it is yet to be proven and the investigation is yet to back these allegations about the conspiracy to convert Hindu women. However, obscene videos have been found on the particular person's devices. Let's quickly take a look at the responses that we have so far on this very story at this point.
2: Manish Sharma, who is a scientist, was connected to Telegram and channels. For entry to those channels, he has kept his fake name. उस फेक नाम से चैनल से जुड़ा हुआ था,
3: मोइन खान था
2: ना। हाँ, फेक नाम उसने मोइन खान रखा हुआ था और उसी के अनुसार वो उसमें वीडियो फुटेज वगैरह देख रहा था। उसमें से कुछ वीडियो फुटेज ने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखी थी, उसी के आधार पर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया, जो अभी जेल में।
3: तो अभी इससे पूछताछ में कुछ इस तरह की बात सामने आई कि कुछ ऐसे कोटा में ये भी देखकर इस तरह
2: नहीं, इस तरह की कोई चीज सामने।
4: इसका मोबाइल भी हमने जब्त कर लिया है और मोबाइल जब्त कर पुलिस के पास है और पुलिस उसके एक एक पहलू पर जांच कर रही है। हमने प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्रालय में भी शिकायत दी है मेल के द्वारा कि इसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों से इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इसके जो अकाउंट है, इसके मिलने वालों के अकाउंट है, रिश्तेदारों के अकाउंट है, बैंक खाते हैं, उनकी एक एक की जाँच होनी चाहिए। कहीं से कोई फंडिंग तो नहीं हो रही, इसकी जाँच होनी चाहिए। ये किस किस के संपर्क में था, अपने मोहल्ले में, अपने काम करने के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, उन सब लोगों की भी जाँच होनी चाहिए।
5: मैंने आपको बिल्कुल सेफ साइड रखा हुआ है। क्यों, खुद लड़ रहा हूँ, अकेला लड़ रहा हूँ तो मैं हर बात पे मना कर देता हूँ कि नहीं, तुम सामने मत आओ। क्यों, सिर्फ इसलिए कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ। खुदा न खासा कुछ ऐसा मसला बन जाए तो तुम्हारे उधर तुम्हारे लिए जो है ना वो सेफ्टी मुश्किल हो जाएगी। अपने जैसे कॉलेज मेट जो हैं या मतलब जो दोस्त हैं या जो मुस्लिम लड़के उधर के हैं उनको जगाओ, आपस में जब बैठो तो मीटिंग करो, उनको समझाओ, उनको जगाओ, ठीक है। उनको पहले, सबसे पहले उनको मतलब है जोश उभारने के लिए, उनको इस लाइन पे लगाने के लिए सबसे पहले उनको मजहबी दिखाओ कि ये लोग हमारे मजहब के ख़िलाफ़ क्या कर रहे हैं, फिर उनको इस टीम का बताओ। अगर मैं चाहता ना तो मैं आपको ग्रुप में एडमिन बना के ना इन लोगों के ख़िलाफ़ खड़ा कर देता। आप उनसे लड़ते झगड़ते चैट करते, आईडी रिपोर्ट होती, वो आपकी आईपी नोट करते, हो सकता है आरएसएस के आपके घर तक पहुंच जाते। मैंने आपको बिल्कुल सेफ साइड रखा हुआ है।
1: Sharad Kumar now joining us on the broadcast with more details on this particular story and the recent findings within it, allegations coming to the forefront. Sharad, very good morning to you. सबसे पहले ये जो अभी पाकिस्तान लिंक्स आ रहे हैं सामने, इनके साथ जो मास्टरमाइंड है उनके साथ, और ये भी एलिगेशन लगाया जा रहा है कि कन्वर्जन के एलिगेशन तो पहले से ही थे, पर 40,000 से ज्यादा ऑब्सीन वीडियोस पाए गए हैं जो इनके डिवाइसेस पे, और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम, ये सब यूज किया जाता था इनके द्वारा ये कन्वर्जन रैकेट चलाने के लिए, और ये सिर्फ कोटा तक नहीं है, ये बहुत फैली हुई बात है। इसके बारे में और क्या जानकारी है?
6: बिल्कुल श्रेया, एक बहुत बड़ा रैकेट है जो सिर्फ कोटा तक नहीं है, जयपुर में भी एक प्रताप नगर में रहने वाली लड़की को गिरफ्तार किया गया है जो पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था और उसने इस तरह से कन्वर्जन कराया है। ये एक बड़ा रैकेट है जो पाकिस्तान से चलाया जा रहा था और पाकिस्तान के मौलवी जो हैं वो ऑनलाइन कन्वर्जन करा रहे थे। वो ऐसे लड़कियों को टारगेट करते थे जो लड़कियां अकेले में रह रही हों या फिर दुखी हों या जिनकी शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी हो, उन्हें ये माइंड वॉश करते थे कि कैसे इस्लाम जो है इन चीजों से छुटकारा पा सकता है और तुम्हें खुशी दे सकता है। और इस पैटर्न पर ये आप समझिए कि छोटे छोटे शहरों में करौली जैसे और कोटा के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली लड़कियों को इन्होंने टारगेट किया है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा रैकेट है। और इतने बड़े संख्या में जो वीडियो मिले हैं, ये वीडियो भी अपने आप में चौंकाता है कि किस तरह से, क्या ये ब्लैकमेलिंग का भी खेल था कि अगर कोई कन्वर्ट नहीं होना चाह रहा है तो उसे ब्लैकमेलिंग किया जाए। ये एक बड़े रैकेट का हिस्सा है जिसकी जांच केंद्रीय स्तर पर की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के जो विक्टिम सामने आ रहे हैं वो विक्टिम देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये सुनियोजित साजिश का हिस्सा है और सीमा पार से ये पूरा रैकेट चलाया जा रहा है और सोची समझी रणनीति के तहत चलाया जा रहा है। खास तौर से जो वल्नरेबल गर्ल्स हैं या औरतें हैं, तलाकशुदा हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। यहाँ तक कि छोटे बच्चों, एक ऐसी औरत भी इस रैकेट में गिरफ्तार हुई है जो अपने छोटे बच्चे को लेकर निकल गई थी और कन्वर्ट हुई वहां से, और वो पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थी। उसके मोबाइल जो जब्त हुए हैं तो खूब सारे चैटिंग मिले हैं। अब उसके घर के आसपास रहने वाले लोग अचंभित हैं कि इतनी चुपचाप ये रहती थी जब से उसकी शादी टूटी थी और किसी को अंदेशा नहीं हुआ कि वो इस तरह से पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थी। तो ये भारत के खिलाफ पाकिस्तान का एक बड़ा साजिश है और खासतौर से हिंदू लड़कियों को टारगेट करने का और कन्वर्जन करने का।
1: जी, जो एक बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है वो है इन्वेस्टिगेशन के तहत पुलिस ये कह रही है कि कोई एविडेंस अभी तक इस चीज पर नहीं मिला है कि रिलीजियस कन्वर्जन हुआ था, सर्कमसिजन के केसेस हुए थे, या फिर कोई पाकिस्तानी लिंक जो है वो एस्टैब्लिश करने के लिए अभी भी कोई एविडेंस, वैसे करारा एविडेंस अभी भी फिलहाल उनके हाथ नहीं लगी है। इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? ये जो एविडेंस, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से क्या आपको लगता है ये केस में भी पुलिस इतनी तगड़ी नहीं बना पाएगी, एस्टैब्लिश नहीं कर पाएगी? ये कितना एक्सटेंसिव नेटवर्क इन्होंने बना के रखा था यहाँ पे कोटा में?
6: देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ श्रेया कि कोटा में अकेला नहीं है ये। कोटा में इन्होंने एक नेटवर्क बनाया था जिसमें अब ये नेटवर्क का हिस्सा है जो मोबाइल में जो वीडियो मिले हैं पाकिस्तान से और बातचीत करते हुए और पाकिस्तान से जो निर्देश आए हैं, ये अपने आप में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तो है। वहां तो कार्रवाई नहीं की जा सकती है, मगर यहाँ कार्रवाई की जा सकती है कि किसके जरिए और कौन था जिसके जरिए वो संपर्क में आए। लेकिन जैसा बात हम बता रहे हैं कि करौली का हो या फिर ये जो महिला मिली है इंदौर में, अब पुलिस उसमें कह रही है कि हम यहाँ से राजस्थान से पुलिस गई थी और इंदौर में महिला बोली कि नहीं, मैं तो अपने मर्जी से कन्वर्ट हुई हूँ। तो अभी सारा ये रैकेट जो है, उस रैकेट में बहुत सारी ऐसी महिलाएं लड़कियां हैं जो
1: बहुत सारा खुलासा होना अभी भी बाकी है, इन्वेस्टिगेशन बाकी है इस पूरे केस में। बट What we are gathering viewers, Sharath, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। What we are gathering viewers is the fact that at the end of the day, there is a Pakistani link that's come to the forefront with that audio clip that we played out and the fact that it was a extensive religious conversion racket that was being exercised. With that, we have more breaking news coming in. Let's quickly take a look. Big news coming in. Emergency chapter makes class 9 debut. NCERT adds emergency to class 9 curriculum. 1975 emergency horror lessons. NCERT revises their social science syllabus. The NEP, that is the National Education Policy of 2020, brings emergency to class 9th grade. Now, emergency chapter has been moved from class 12th to class 9th. Now, the NCERT's new textbook covers Indira Gandhi's emergency period. It's a historic overhaul of a school curriculum under the National Education Policy of 2020, where the NCERT has officially introduced the topic of the 1975 to 77 National Emergency Period into Grade 9 Social Science syllabus for the very first time. Landmark inclusion features prominently in Chapter 6 of the newly released textbook titled Key Features of Social Science Textbook, Understanding Society, India and Beyond. For grade 9 part 1. These are the details of that very textbook and the curriculum that we are bringing to you. Previously, the detailed lessons on the emergency era was reserved strictly for senior secondary, that is class 12 political science students. This year, 51 years have been completed since the emergency was imposed, and now with this year, 2026, we see this particular chapter making a debut. The emergency chapter is making a debut in the grade 9th at syllabus, the curriculum as we speak. On that note, viewers, it is the Prime Minister Narendra Modi who's come out with a post on emergency. Today we, and I'm taking you through that very post, today we pay homage to all those who steadfastly defended democratic values during one of the darkest chapters in India's history, the emergency. It was a direct assault on our constitution. Witness the suspension of civil liberties, curbs on freedom of expression, arrests of political leaders, journalists, social workers, and an assault on institutions that are the bedrock of our democracy. At the same time, it also revealed the extraordinary courage of countless citizens who refused to remain silent and upheld the ideals of our enshrined in our constitution. That is just an excerpt from the post that's been made, a lengthy post at that, that's been made by the Prime Minister remembering the emergency period today. On that very note, let me now go across to Abba Bakaya of the Business Today TV with all updates of the markets in this business show. Abba, very good morning to you and over to you.
0: Presented by National Stock Exchange.
7: Look, this investment guru tips will double your money. Just claim the offer.
8: Double your money from any random group. Pay attention. Promising double returns, they'll lure you in tight. Unverified groups will send fake tips overnight, emptying your pockets before you can fight.
9: Well said! Well said! Well said!
8: SEBI and NSE advise, consult only SEBI registered advisors and make payments only to verified accounts or UPI IDs. An investor awareness initiative by SEBI and NSE.

0: पूरे देश में चर्चा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी और सम्मानित बहुत पुराना विश्वसनीय एक मीडिया हाउस ने इसको पब्लिक डोमेन में लेके आया। 30 घंटे बीत गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने कल सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी की प्रदेश इकाई और मोहन यादव जी से प्रश्न पूछे थे। 30 घंटे तक कोई जवाब नहीं, एक जवाब आया है। उन्होंने कहा बात सवाल जमीन का था, बात जाति की करने लगे। ओबीसी की जाति का मुख्यमंत्री कांग्रेस को पच नहीं रहा है, ये जवाब था। ये मोदी मॉडल, नया मोदी मॉडल, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न मेरे कोई आगे है न कोई मेरे पीछे, देशवासियों मुझ पे भरोसा करो।
1: मेक योर मीडिया प्लान स्मार्टर विद इंडिया टुडे लाइव टीवी ऑन योर कनेक्टेड डिवाइसेस। Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
2: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
3: Co-powered by Sharda University, the world comes together at Sharda. Where are you? CP Plus, Upar Wala Sab Dekh Raha Hai.

0: watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
1: In big story at this hour, Rahul Gandhi has said sorry for defaming Shivraj Singh Chauhan's son. Facing heat as far as a defamation case is concerned, Gandhi has regretted his remark. He sought relief in a defamation case. Now, in the year 2018, Rahul Gandhi linked Shivraj Singh Chauhan to the Panama scam. Rahul's defamatory words during the 2018 elections. Congress MP Rahul Gandhi has filed an application before the Madhya Pradesh High Court expressing regret for his defamatory statement about Union Minister, now Union Minister, Shivraj Singh Chauhan's son, Kartikeya Singh. I'm going to go straight across to Ravish for more on that story. Ravish, Kartikeya ne complaining defamation notice diya tha Bhopal court ke dwara leader of opposition Rahul Gandhi ko. Aaj Rahul Gandhi ne maafi mangi hai aur ye kaha hai ki ye case ko abhi quash kare.
2: देखिए 2018 की बात है, मध्य प्रदेश में इलेक्शंस थे, असेंबली इलेक्शंस थे और झाबुआ में एक पॉलिटिकल रैली को एड्रेस कर रहे थे राहुल गांधी. उसी दौरान उस रैली को एड्रेस करते टाइम राहुल गांधी ने पनामा पेपर लीक का नाम लिया था और उसी वक्त जो देन चीफ मिनिस्टर थे शिवराज सिंह चौहान, उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लेते हुए कहा था कि पनामा पेपर लीक पे उनका भी नाम है. और इसी को लेकर के कार्तिकेय सिंह चौहान ने जो भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट है उसमें एक एप्लीकेशन दी थी और उसमें केस लगाया था. उसको सुनवाई काफी लंबे समय से चल रही थी लेकिन फिर राहुल गांधी की तरफ से आवेदन दिया गया कि इस केस की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में नहीं बल्कि जबलपुर हाई कोर्ट में होनी चाहिए. और जबलपुर हाई कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो वहां पे राहुल गांधी के जो एडवोकेट हैं उन्होंने अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट पेश किए और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम जो है वो गलत उन्होंने ले लिया था और ये भी कहा कि वो किसी और का नाम लेना चाह रहे थे लेकिन कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम उन्होंने ले लिया और उनकी कहीं पे भी वो कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम इस पनामा पेपर लीक में लेना नहीं चाहते थे. तो ये बात उन्होंने कल कही है लेकिन इस बार सबकी निगाह इसलिए टिकी है क्योंकि आज कार्तिकेय सिंह चौहान के जो वकील यानी जो कंप्लेनेंट के वकील हैं वो आज हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेंगे कि राहुल गांधी ने जो अपोलॉजी मांगी है क्या उससे उनके जो क्लाइंट है यानी कार्तिकेय सिंह चौहान जो कि अब यूनियन मिनिस्टर हो चुके हैं शिवराज सिंह चौहान उनके बेटे हैं तो क्या वो इस अपोलॉजी से सेटिस्फाई है या नहीं या फिर इस मामले में वो और भी आगे लीगल एक्शन लेना चाहते हैं. तो आज इस पे हियरिंग होनी है जबलपुर हाई कोर्ट में. राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस के जो राज्यसभा एमपी है और लीगल सेल से जुड़े हुए हैं विवेक तन्फा वो मौजूद रहेंगे और कार्तिकेय सिंह चौहान की तरफ से उनके जो एडवोकेट हैं वो आज जबलपुर हाई कोर्ट में रहने वाले हैं इस इंपॉर्टेंट हियरिंग के लिए.
1: बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ. रविश पाल सिंह गेटिंग इन दोज डिटेल्स. रिमेंबर रविश इज टेलिंग अस अबाउट व्हाट हैड रियली हैपेंड इन एन इलेक्शन रैली इन जबुआ इन 2018 वेयर गांधी मेंशनड हिज नेम कार्तिकेय नेम बाय रेफरिंग टू द पनामा पेपर्स लीक स्कैंडल दस डैमेजिंग हिज रेपुटेशन वॉज वट वॉज आर्ग्यूड बाय कार्तिकेय सिंह द सन ऑफ शिवराज सिंह चौहान. द कोर्ट इशूड had issued summons to Gandhi for personal appearance, following which the Congress leader moved the High Court seeking to quash the summons as well as the defamation case. Legally speaking, Ravish, ye mamla abhi kaise aage badhega? Aapne kaha tha ki ye is pure mamle mein ye Gandhi, Rahul Gandhi ne is samay maafi bhi mangi hai, kaha hai ki ye jo maine kaha tha ye galat tha ek tarike se, Kartikeya Singh ka naam main lena nahi chahta tha lekin maine liya, aur kya court isko accept karega?
2: इसी पे आज सबकी निगाहें टिकी श्रेया क्योंकि जो एडवोकेट हैं काफी सीनियर एडवोकेट हैं कांग्रेस की तरफ से जो आज पेश होने वाले हैं राहुल गांधी के साइड से तो विवेक तन्फा और या फिर कार्तिकेय सिंह चौहान के जो एडवोकेट हैं दोनों की तरफ से इस मामले में अभी तक किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है. लेकिन हाईकोर्ट के सभी के नजर टिके बताया जा रहा है कि आज दोपहर को इसकी हियरिंग होनी और हियरिंग के बाद ये काफी साफ हो जाएगा कि कोर्ट या फिर जो क्लाइंट है कंप्लेनेंट जो है कार्तिकेय सिंह चौहान वो राहुल गांधी की इस अपोलॉजी से सेटिस्फाई है या नहीं और उसी पर आज सबकी निगाहें टिकी है क्योंकि अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं और कार्तिकेय सिंह चौहान इस पर फर्दर लीगल एक्शन लेना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं तो देखना ये होगा कि कोर्ट का इस पर क्या रुख रहता है. कोर्ट इस अपोलॉजी के बाद उनके जो कार्तिकेय सिंह चौहान है उनको क्या डायरेक्शन देता है उस पर भी आज सबकी नजरें टिकी होंगी.
1: Right, be with us. Ravish is coming back to you in a moment from now. It's a setback also for Rahul Gandhi.

0: a burst pipe, a dead water heater, the AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price, void in Florida.
1: Order for Jennifer C.
2: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
1: Yeah. Can you handle that much caffeine?
2: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
1: Oh, really? That's great.
2: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
1: Yeah, you just said that.
2: Did you say I just said that?
1: Yeah, I'm cutting you off.
2: I can't have any more? Why not?
3: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
4: Today's Match Day Preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points.
5: This has been your official Odyssey Sports Match Day Preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
6: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
7: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
6: Big 12 Radio.
8: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
6: and
8: down.
6: Talk sports.
9: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
6: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
10: Checks and frisking of employees during arrival and departure from duty. Employees handling cash were allegedly not screened properly. As per SIT, the dress code for employees counting cash was also not enforced strictly. Employees were even seen standing in front of cameras to hide the theft. SIT probe also observed negligence in transportation of donation boxes from the temple premises to the final deposit of cash in the bank. Sources indicate that no individual has been given a clean chit in the investigation so far. A member of the SIT has confirmed in an exclusive conversation with India Today that further action will be determined after the report is examined at the government level. Meanwhile, a PIL filed in the Apex Court has sought a CBI-led SIT probe into the handling of the donations. The plea demands registration of an FIR, a time-bound investigation into alleged financial irregularities, and a probe into possible embezzlement or corruption. The petition argues that transparency is essential as the donations are linked to the faith of crores of devotees. The controversy has sparked a political slugfest. Opposition leaders have targeted the BJP government, questioning who is being projected and alleging that Lord Ram's name is being used for political gains.
11: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
12: Co-powered by Sharda University. The world comes together at Sharda. Where are you?
13: Souls and Symphony by Tanishq Natural Diamonds.
14: Good afternoon and thank you for tuning in to India Today. You're watching Lunch Break with me, Suesha Sawant. The quick check of the top headlines we're tracking for you this hour. Taratala tragedy rocks Kolkata. Death toll rises to 8 and shed collapse. 5 arrested. Chief Minister Shubhendu Adhikari has ordered SIT probe and city-wide project audit. CAG audit raises red flags over Karnataka's Gruha Lakshmi scheme, flags data and payment irregularities, Congress government scheme, thousands of beneficiaries and common bank accounts. Abhishek speaks over MEA's passport clarification. Opposition asks, what is proof of citizenship then? BJP fact check says MEA has not announced a new policy. Passport has always been a travel document. Vijay launches bus fleet in Chennai, flags off 300 diesel and CNG buses. Vijay takes the bus, waves at locals. Prime Minister Modi's darkest chapter, attack on emergency. Post Prime Minister Modi on Samvidhan Hatya Divas says emergency direct assault to constitution. Big revelations in Lohagarh murder horror. 48 minutes, a hoodie and a signal. The key clues that led cops to crack the case. Chetan signaled and gestured at Sia from a distance to execute the murder. Our top story. A passport is issued only to Indian citizens. However, the Ministry of External Affairs has now clarified that a passport is not a document that establishes citizenship. The statement has triggered a widespread debate among the opposition on what exactly constitutes conclusive proof of citizenship. MEA has stated that passports are primarily travel documents issued by the government to facilitate international travel. It means that possessing a passport does not by itself define citizenship. The Ministry of External Affairs has also said a passport is not a document that establishes citizenship, even though it is issued only to Indian citizens. Opposition has now hit out at the centre. Few netas from opposition referred to MEA's statement as absurd and also questioned the verification before passport issuance. BJP, meanwhile, has hit out at the opposition. It also took a jibe at the opposition, calling it the Kagaz Nahi Dikhayenge Brigade. BJP has said that the opposition statement on passport was only misleading and that MEA has not announced any new policy. The Passport Act of 1967, passed already, stipulates that passports are only a travel document. Subsequently, in 2013, courts have clarified that a passport does not constitute proof of citizenship. Listen in to all the responses that have come in. But before that, we'll also tell you what the Indian citizenship means and what are the most frequently asked questions around it. Is my passport proof of citizenship? No. Now the MEA is saying that the passport is only a travel document. Now, is this a new law? To which the response is no. 1967 law that says that passport is not citizenship proof, it's a travel document. The question being asked is, do I have one document to prove citizenship? The answer is no. Single document cannot prove your citizenship in this country. The question being asked is Aadhaar card then the proof of citizenship? The answer is no. Aadhaar card establishes identity and residence. The other question being asked is by citizens that in that case, is voter ID a proof of citizenship? The answer is no. Voter ID gives electoral rights. Then the question being asked is, what is the strongest proof of citizenship in that case? To which the answer is that citizenship certificate by the Home Ministry is the most definitive proof of citizenship. So how exactly to prove Indian citizenship for any Indian citizen? No single document that serves as proof of citizenship, multiple documents that together establish citizenship. Birth certificate issued by the registrar of birth and death both, land records, PAN card, domicile certificate, voter ID issued by the election commission that helps school, college certificates with birth and parent information, government service records under the center or state government that also become one of the documents, citizenship registration certificate that is issued by the Home Ministry, official documents accepted by the court, tribunals bank, post office, LIC records that show Indian address. And all of this is as per the Citizenship Act of 1955 that constitute documents that prove your citizenship. Let me take this to my colleague Aishwarya Paliwal over the peaking politics over this very statement, because it can get many worried, Aishwarya, to what exactly proves that I'm an Indian citizen. I have my passport, and that for the longest time for people has been the most important document. While the opposition goes all out to hit out at the center saying why this statement, the government's clarification to say no new policy has been issued by the MEA. How is one to read into that?
15: Well, you know, Swisha, one thing is very, very clear. The government has very clearly spelled out that this is something which is not new. So what the opposition has been saying, that this is something which has been changed, a drastic change of sorts, that's what the opposition at the moment is pointing fingers at. The clarification coming in that since the inception of passport, this is what was written in the rules and no rules have been changed. There are other documents which actually prove that you are a citizen of India, and also whenever you want to travel, so passport actually is a document through which you travel. It is not a proof that you are a citizen of our country. Now, why the opposition has been doing it? Because we have seen how the NRC and the CEA, these were very hot topics when they were brought in the parliament also. We did see how across the country at various places there were protests that were being held, something that the government has put on the back burner for now. But the government can actually sense that this is creating a lot of confusion, which is why we are seeing precise clarification now coming out. The statement from the MEA, very, very clear that passport is just a travel document. It is not a proof that you are a citizen of India. So, Isha.
14: All right, Aishwarya, I request you to stay on with us. Let's also tell our viewers the passport facts, especially around the Indian passport. So now it is very clear, and one must understand this for their basic two when it comes to documents, that passport is not a citizenship proof. It has been one of the norms all along. The Bombay High Court in 2013 had said that passport alone cannot be citizenship proof. Supreme Court had also ruled that passport is a travel document only. Passport Act 1967 that clearly states that passport can be given to non-citizens as well. Taking this back to Aishwarya, who continues to stay with us on the broadcast. Aishwarya, politics aside, very important for the common man to understand, who have largely been relying on their passport, thinking that this is my citizenship document, to what the courts have said in all these years, to what the MEA is saying now, and how valid are the arguments that are being made by the opposition?
15: Well, you know, Swisha, unfortunately, the arguments that are now being made by the opposition, they will not stand, because we have seen the rules being clearly spelled out first. And second, we have seen how court after court order also has very clearly spelled out that the passport is not a proof of citizenship. It does not mean that you are a citizen of India. Now, the reason why the opposition at the moment is raking this issue up also, let me tell you from what I understand at the moment, Swisha, in the next 15 days or 16 days, we will see the parliament session coming up. One statement from the MEA, which in fact is a clarification of sorts which came out. They were speaking about the Indian passport, and in that context, the MEA said that it is a travel document. When you need to travel from India abroad, that is when the passport comes into picture. And this is the reality. You know, that's what the government also now is trying to highlight and trying to douse the fire that the opposition has been fanning over the past 24 hours. The opposition believes that they can rake this issue up. The government giving out clarification and also importantly pointing out that this is not a change. Nothing has actually changed. Things are as they were. It is very clearly spelled in the rule book. The rule very, very clearly says that the Indian passport, a document when you want to travel abroad, but is not a proof that you are a citizen of the country. This is the clarification coming in from the government at the moment. Swisha.
14: We'll leave it at that. We'll continue to track all the reactions coming in on this big story. And for now, more breaking news coming in. Former Aam Aadmi Party candidate Nandini Bosmia, who was living in a live-in relationship with Rajkot, committed suicide. The family has made sensational allegations in this case. The body of a 23-year-old woman who was in a live-in relationship with a married man from Junagadh was found hanging in her flat in Rajkot. Her family has alleged murder. Nandini Bosmia, who worked as a medical representative, she had also contested the Jaipur municipal elections on behalf of the Aam Aadmi Party, but had lost that election. The sister of the deceased, who has leveled serious allegations against Aslam Sama, a man with whom she had a friendship agreement, Police have registered a case of accidental death and initiated further investigation. The body of 23-year-old Nandini Bosmia, who contested the Jaitpur Nawagarh municipality elections, has been found dead in Rajkot. The discovery of her body hanging from a noose in the hall of her flat near Gondal Chokhari has caused a massive stir. Following this incident, Nandini's family has made sensational allegations. They've alleged that Nandini was murdered and hanged, originally from Jaitpur, Nawagarh, and currently residing in the Agaman Residency flat near Gondal Chokhari in Rajkot. 23-year-old Nandini Bosmia, who was found hanging from a noose in the hall of her flat around 7:30 p.m. on Monday. The incident was reported to 108, after which an EMT examined her on the spot and declared her dead. Upon learning of the incident, her family from Jaitpur, Nawagarh immediately arrived. Taluka police also arrived at the scene, completed the necessary paperwork and sent the body for post-mortem. Let me take this to my colleague Brijesh Doshi, who's tracking all the developments on this big story. Brijesh, what exactly has happened in the case? What does the preliminary investigation indicate and the claims being made by the family?
16: The case has drawn the attention after family members alleged that the Bosmia had been in a turbulent living relationship with Aslam Sama, a married man from Junagadh, and had repeatedly complained of abuse and threats by the living partner. Nandini has informed their parents, that the relationship is quite abusing and threatening because the living partner was going to the first wife to meet his first wife multiple times. Though Bosnia has denied to meet her, still he was going there, and that's why there was a quarrel between two of them, and that's why family is alleging the murder. Though police has denied any kind of murder situation right now. Police has reported that this is an accidental death as a prima facie. But we will wait for the forensic reports. Once the forensic reports will come, then we will be able to say anything about the whether there was a murder or not. Still, police is right now investigating the matter as a accidental death, and they are waiting for the forensic report.
14: All right, Brijesh, many thanks for getting us those details. And the body of Nandini found hanging while the investigation continues to get to the bottom of what the family has claimed with regards to the relationship and the married man she was living in with. But we'll continue to get you all the latest updates. Meanwhile, the Kota case that has snowballed into a massive controversy, with Bajrang Dal alleging the accused possessed over 40,000 obscene videos, ran a religious conversion network and had links to Pakistan. The group has claimed Hindu women were being targeted through Telegram, Snapchat and Discord, and has demanded a national level probe into what it calls a larger conspiracy. Police, however, saying the investigation is still underway. Investigators have confirmed the accused was arrested under BNS and IT Act and that obscene content was recovered. But they have also added that there was no evidence of religious conversion, circumcision or a Pakistan link that has been established so far. Digital evidence is being examined, and officials say that further conclusion will depend on the ongoing investigation. Inside the Kota conversion factory, where this is a shocking park-backed conversion plot that is now being investigated into, it is an alleged conspiracy to convert Hindu women, and 40,000 obscene videos that were discovered targeting Hindu religion, porn clips with anti-Hindu symbols, Pakistan handler audio on how to convert Hindus, Manish Sharma, who turned into Moin Khan, and he apparently ran this plot. Hindu groups protest as they seek action against all of those involved in this conversion racket, where cops are saying that they yet to find the Park conversion link. Let's listen in to all the responses that have come in.
17: मनीष शर्मा जो विज्ञानगर में रहता है, ये टेलीग्राम और उन चैनलों से जुड़ा हुआ था. उन चैनलों में एंट्री के लिए इसने अपना फेक नाम रख रखा था. उस फेक नाम से चैनलों से जुड़ा हुआ था.
18: मोइन खान था.
17: हाँ, फेक नाम उसने मोइन खान रखा हुआ था, और उसी के अनुसार वो उसमें वीडियो फुटेज वगैरह देख रहा था. उसमें से कुछ वीडियो फुटेज उसने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखी थी, उसी के आधार पर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया, जो अभी जेल में.
18: तो अभी इससे पूछताछ में कुछ इस तरह की बात सामने आई कि कुछ ऐसे कोटा में ये भी देखकर इस तरह
17: की कोई चीज सामने
19: इसका मोबाइल भी हमने जब्त कर लिया है और मोबाइल जब्त कर पुलिस के पास है और पुलिस उसके एक एक पहलू पर जांच कर रही है। हमने प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्रालय में भी शिकायत दी है मेल के द्वारा कि इसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों से इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इसके जो अकाउंट है, इसके मिलने वालों के अकाउंट है, रिश्तेदारों के अकाउंट है, बैंक खाते हैं, उनकी एक एक की जाँच होनी चाहिए। कहीं से कोई फंडिंग तो नहीं हो रही, इसकी जाँच होनी चाहिए। ये किस किस के संपर्क में था, अपने मोहल्ले में, अपने काम करने के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, उन सब लोगों की भी जांच होनी चाहिए।
20: मैंने आपको बिल्कुल सेफ साइड रखा हुआ है। क्यों? खुद लड़ रहा हूँ, अकेला लड़ रहा हूँ, तो मैं हर बात पे मना कर देता हूँ कि नहीं, तुम सामने मत आओ। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ। खुदा न खासा कुछ ऐसा मसला बन जाए तो तुम्हारे उधर तुम्हारे लिए जो है ना वो सेफ्टी मुश्किल हो जाएगी। अपने जैसे कॉलेज मेट जो हैं, या मतलब जो दोस्त हैं, या जो मुस्लिम लड़के उधर के हैं, उनको जगाओ। आपस में जब बैठो तो मीटिंग करो, उनको समझाओ, उनको जगाओ, ठीक है। उनको पहले, सबसे पहले उनका मतलब है जोश उभारने के लिए, उनको इस लाइन पे लगाने के लिए सबसे पहले उनको मज़हब भी दिखाओ कि ये लोग हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ क्या कर रहे हैं। फिर उनको इस टीम का बताओ। अगर मैं चाहता ना तो मैं आपको ग्रुप में एडमिन बना के ना इन लोगों के ख़िलाफ़ खड़ा कर देता। आप उनसे लड़ते, झगड़ते, चैट करते, आईडी रिपोर्ट होती, वो आपकी आईपी नोट करते, हो सकता है आरएसएस के आपके घर तक पहुंच जाते। मैंने आपको बिल्कुल सेफ साइड रखा हुआ है।
14: शरद कुमार जॉइनिंग अस लाइव ऑन द ब्रॉडकास्ट। शरद, डू टेक अस थ्रू डिटेल्स ऑफ व्हाट द इन्वेस्टिगेशन हैज रिवील्ड सो फार, द ऑब्सीन वीडियोस, हाउ हिंदू सिंबल्स वर बीइंग प्रोजेक्टेड, मोस्ट इंपोर्टेंटली द लार्जर रैकेट ऑफ टारगेटिंग हिंदू विमेन, and that too through Telegram, Snapchat, Discord. What has the police found out?
21: देखिए, पुलिस ने जो अभी तक पता लगाया है उसमें ये टेलीग्राम का एक चैनल है जिसके जरिए ये लोगों को, जो युवा हैं उन्हें फंसा रहे हैं। बहुत सारे जो खूबसूरत लड़कियों को देखकर फंस रहे हैं, अश्लील वीडियो देखकर फंस रहे हैं, उसके बाद जब कॉन्टेक्ट में आ जा रहे हैं तब ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि उन्हें किस तरह से अच्छी जिंदगी मिलेगी। और केवल ये लड़कों के साथ नहीं हो रहा है, लड़कियों के साथ भी हो रहा है। ये पिछले दो दिनों में राजस्थान में बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है, जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर भारत में साजिश रच रहे हैं। जैसे मोहम्मद का इसमें नाम आ रहा है, जैसे मोहम्मद से जुड़े हुए लोग जो हैं वो यहाँ पर ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, वैसे लड़के और लड़कियों को जो परिवार में अकेला फील कर रहे हैं, तलाकशुदा हैं, परेशान हैं, उन्हें पहले तो ये बताया जाता है कि इस्लाम में कितनी अच्छी जिंदगी है और उसके बाद कन्वर्जन किया जाता है। कन्वर्जन कराने के बाद इन्हें अपने ग्रुप में जोड़कर बताया जा रहा है कैसे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना चाहिए क्योंकि आपकी मदद उन्होंने जिंदगी में नहीं की है, और किस तरह से हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, जो बबीता धाकड़ नाम की लड़की को जयपुर में अरेस्ट किया गया है, उसको ऑनलाइन पाकिस्तान में बैठे मौलवी ने उसका धर्म परिवर्तन कराया और ऐसा ब्रेन वॉश किया कि बिना पासपोर्ट का हो नेपाल के जरिए पाकिस्तान जाना चाह रही थी। तो आप समझिए कि किस तरह से पाकिस्तानी हैंडलर ने नया तरीका इजाद किया है कि इस देश में जो मुस्लिम लड़के हैं, जो भ्रमित हैं, उन्हें जोड़ा जाए और उनके जरिए कन्वर्जन किया जाए, हिंदू लड़कियों को प्रेग्नेंट किया जाए, प्रेग्नेंट करने के बाद ब्लैकमेल करके उनका कन्वर्जन किया जाए। उस पर पूरे चैट को आप पढ़िएगा तो ये एक सोची समझी साजिश नजर आती है और पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। बहुत सारे जो मोबाइल रिकवर हुए हैं उसमें चैट डिलीट हैं, उनको रिकवर करने की भी कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दो चार दिनों में सारे ज्वाइंट्स को जोड़कर इस रैकेट का हम खुलासा कर लेंगे कि कौन लोग हैं इसके पीछे और कैसे ये झांसे में ले रहे हैं।
14: जी शरद, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। एंड इन द मीनवाइल वी विल आल्सो लिसन इन टू दैट ऑडियो क्लिपिंग दैट हैज स्टर्ड दिस मैसिव कंट्रोवर्सी, वेयर ऑन द अदर साइड इज बिलीव टू बी अ पाकिस्तानी हैंडलर हु वाज ड्राइविंग दिस कन्वर्जन रैकेट। लिसन इन।
20: मैंने आपको बिल्कुल सेफ साइड रखा हुआ है। क्यों? खुद लड़ रहा हूँ, अकेला लड़ रहा हूँ, तो मैं हर बात पे मना कर देता हूँ कि नहीं, तुम सामने मत आओ। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ। खुदा न खासा कुछ ऐसा मसला बन जाए तो तुम्हारे उधर तुम्हारे लिए जो है ना वो सेफ्टी मुश्किल हो जाएगी। अपने जैसे कॉलेज मेट जो हैं, या मतलब जो दोस्त हैं, या जो मुस्लिम लड़के उधर के हैं, उनको जगाओ। आपस में जब बैठो तो मीटिंग करो, उनको समझाओ, उनको जगाओ, ठीक है। उनको पहले, सबसे पहले उनका मतलब है जोश भरने के लिए, उनको इस लाइन पे लगाने के लिए सबसे पहले उनको मजहब दिखाओ कि ये लोग हमारे मजहब के खिलाफ क्या कर रहे हैं, फिर उनको इस टीम का बताओ। अगर मैं चाहता ना तो मैं आपको ग्रुप में एडमिन बना के ना इन लोगों के खिलाफ खड़ा कर देता। आप उनसे लड़ते झगड़ते चैट करते, आईडी रिपोर्ट होती, वो आपकी आईपी नोट करते, हो सकता है आरएसएस के आपके घर तक पहुंच जाते। मैंने आपको बिल्कुल सेफ साइड रखा हुआ है।
14: शरद, आपके पास वापस आना चाहूंगी। बहुत ही सनसनीखेज है, और जिस तरह से इस कन्वर्जन रैकेट को पाकिस्तान से ड्राइव किया जा रहा है, और क्या जानकारी है किस किस से वो कनेक्टेड थे और कितने लोग इस रैकेट का हिस्सा हैं, किस तरह से टेलीग्राम पे ग्रुप्स बने थे?
21: देखिए, टेलीग्राम का एक चैनल तो इन्होंने बना ही रखा है ऑनलाइन। इसमें बहुत सारे मौलवी भी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन जो अब सीधे लड़ाई में कामयाब नहीं हो रहे हैं, अब मेंटल वॉर का सहारा ले रहे हैं। और जो आईएसआई पहले कॉल सेंटर चलाया करता था, उस कॉल सेंटर में जैश से जुड़े हुए लोग, जैसे मोहम्मद से जुड़े हुए लोग प्रशिक्षित किए गए हैं, और वो यहां पर इनको ल्यूर कर रहे हैं। जो भटके हुए लोग हैं, जो मुस्लिम युवक हैं या फिर जो हिंदू युवक हैं, जो परेशान हैं, अब देखिए कैसे उन्हें समझाया जाता है, माइंड वॉश किया जाता है, उनके भलाई के बारे में बताया जाता है। ये जो लड़का मनीष शर्मा है, इसको सबसे पहले इन्होंने अश्लील वीडियो भेज के ल्यूर किया, फंसाया, उसके बाद सुंदर लड़कियां दिखाकर फंसाया, और फिर उसे इस्लाम के में आने के बाद कैसे सुंदर लड़कियां उसे उपलब्ध होगी, यानी कि उस कमजोरी को पकड़ा और फिर उसे आगे बढ़ा। इसी तरह जयपुर वाली बबीता धाकड़, जो उसका बहुत कम उम्र में, अभी करीब 32-33 साल की है, तो 10-15 साल पहले उसकी शादी हो गई थी। वो शादी टूट गई तो बबीता धाकड़ अकेले रहने लगी थी अपने पिता के साथ। उसको अकेले रहने की वजह से, मानसिक रूप से परेशान होने की वजह से उसको टारगेट किया, और उसे सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती साधी, और उसे पाकिस्तान में बैठे हुए मौलवी ने ऑनलाइन कन्वर्ट किया और इस्लाम धर्म ग्रहण कराया। तो क्या ये अकेला मामला है? ये दोनों कोटा का, जयपुर या पूरे राजस्थान में इस तरह का रैकेट चल रहा है? कौन है इसके पीछे? इंडिया में कौन कौन लोग इसे इसके साथ जुड़े हुए हैं? अगर ये लोग पाकिस्तान जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और उससे जुड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अकेले नहीं हो सकते, और भी साथ में लोग हैं। इस पूरे मामले की जांच अब एटीएस भी कर रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ही बड़ा खुलासा हो सकता है कि किस तरह से ये रैकेट आईएसआई और पाकिस्तान के आतंकी संगठन चला रहे हैं, जिसमें लड़के और लड़कियों दोनों को फंसाया जा रहा है। लड़कियों के बारे में उसे अच्छी जिंदगी और खुशी देने के बारे में बताकर इस्लाम की तरफ लाया जा रहा है, और फिर भारतीय उसके चैट से डिलीट किया है, उसमें माना है, उसने जो बबीता अरेस्ट हुई है परसों जयपुर में, उसने माना है कि हाँ, हमें पता था कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है, फिर भी इनके चक्कर में मैं आ गई। तो आप समझिए माइंड वॉश करने के लिए किस तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से ये सहारा ले रहे हैं और प्रशिक्षित हो गए हैं। इसके बारे में अभी पूरा खुलासा अब 2-4 दिनों में होगा, क्योंकि बहुत सारे चैट ये डिलीट भी कर चुके हैं, टेक्निकल लोगों से वो रिकवर कराया जा रहा है, क्या पैसे का भी कोई ट्रांजैक्शन हुआ है इसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है।
14: और ये मनीष शर्मा का क्या रोल था, किस तरह से वो मोइन खान बने और उन्हें अरेस्ट किया गया, उनके पास से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं?
21: देखिए, बड़ी संख्या में उसके मोबाइल से अश्लील तस्वीरें मिली हैं, क्योंकि उसे मानसिक रूप से इन्होंने टारगेट किया था, क्योंकि वो अश्लील तस्वीरें देखता था, लड़कियों के वीडियो देखता था। तो ये लड़कियों के वीडियो का ग्रुप भेजकर उसे कहा कि इस ग्रुप में जुड़ जाओ, तुम्हें अच्छे अच्छे वीडियो हम दिखाएंगे। और उसके बाद ये वीडियो जोड़ने के बाद इसे इन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट किया, और फिर लड़कियों का भी झांसा दिया कि तुम्हें अच्छी लड़कियां मिलेंगी। और उसके बाद ये इस्लाम में धर्म कन्वर्ट कराने के बाद ये उसे समझाते बता रहे हैं कि कैसे तुम्हें हम आगे लेकर जाएंगे और किस तरह से हमारे नेटवर्क का हिस्सा तुम्हें बनना है। ये लड़का हो या लड़की हो, इनका एक मोडस ऑपरेंडी है और मोइन खान उर्फ मनीष शर्मा को इसी मोडस ऑपरेंडी से इन्होंने पकड़ा है। यह अभी शुरुआती रूप से जुड़ा हुआ था, मगर इस टेलीग्राम में कौन ये कह रहा है कि वो कि मैं तुम्हें एडमिन बना देता हूं, तुम भी हमारे लिए काम करो, लेकिन तुम्हें हम सेफ रखना चाहते हैं। कितने लोगों को एडमिन बनाया है पाकिस्तान से और वो एडमिन जो बने हैं वो क्या क्या काम कर रहे हैं, ये विस्तृत खुलासा होना। 40,000 अश्लील तस्वीरें कम नहीं होती हैं। वो कौन सी लड़कियां हैं, क्या उन्हें ब्लैकमेल करके खींचा गया है, क्या ये एक साजिश का हिस्सा है लोगों को जोड़ने का, ये सारे मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है। और चूंकि ये टेलीग्राम चैनल पर सारा कुछ चल रहा था तो इसे डिकोड करना भी आसान नहीं है, पुलिस के लिए चैलेंज है, इसलिए इसमें अभी जांच जारी है।
14: शरद, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। And in the meanwhile, let's tell you what this Jihad al-Akbar plot was all about. The mastermind of this plot was a man called Moin Khan. We are showing you his picture on your screen. He was the one who allegedly got Pakistani handlers' help. How they exactly functioned? They used Telegram, Snapchat, Discord to trap Hindu women. Thousands of porn clips that were circulated on these platforms with anti-Hindu symbols that have been found. The mastermind who converted Hinduism to Islam, and all of this on tape, like you heard that audio clip where the park handler was clearly speaking about converting Hindu women and how there needs to be a larger operation around this with the help of Moin Khan. Hindu groups who are now seeking a probe into all those social media accounts, and clamor is growing for a probe into Telegram groups and these sort of audio clips that have now come to light. And we now get you details of Delhi's 600 crore rupees health scam. ED has registered money laundering case. ED has sought documents from the Delhi government's health department. Probe has been initiated into the procurement of medical equipment. The Enforcement Directorate has requested this information as part of an ongoing investigation under PMLA, that is Prevention of Money Laundering Act. The Enforcement Directorate's Delhi Zone 2 team has written to the Director General of Health Services, DGHS, Delhi government, asking for documents related to procurement made by Central Procurement Agency and the DGHS. The scope of the investigation covers the procurement of items such as portable X-ray machines, C-arm radiological equipment, anesthesia workstations, oral rehydration salts, bed sheets, linen, surgical items, dressings, sutures, cannulas, gloves and medicines. Enforcement Directorate has also sought records regarding the tender process, technical and financial evaluations, contract awarding procedures, supply of goods, inspections, approvals and the release of payments. Additionally, ED has requested for details of transactions involving the company's manufacturers, OEMs, distributors from whom the medical equipment was being procured. The records sought pertain to companies involved in the manufacturing of portable X-ray machines, CR machines and anesthesia workstations. Through this investigation, the ED is aiming to determine whether there were any irregularities, financial misconduct or instances of money laundering in the medical procurement process. Let me take this to my colleague Sushant, who's tracking all the developments on this big story. Sushant, this could be huge given what is under suspicion right now with regards to ED now getting to the bottom of this, asking for all the details and also having written to the DGHS. What has come to light so far and when is the health ministry likely to respond?
0: देखिए, इस पूरे मामले पर जब से ये पूरा मामला सामने आया था उसके बाद से ही लगातार जो दिल्ली की सरकार है उसने कई बड़े फैसले जो है वो लिए हैं। इसमें करीबन 40 डॉक्टर्स के को जो है अगर कहा जाए तो उनके ट्रांसफर्स किए गए हैं। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से जो है विजिलेंस जांच कराई गई और उसके बाद एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्रांच को जो है वो पूरा केस जो है वो सौंपा गया, जिसमें सीपीए के जो हेड थे विनोद कुमार रंगा उनके खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज की गई और उनको गिरफ्तार भी जो है वो एसीबी ने कर लिया। वहीं दूसरी तरफ दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री की तरफ से एसीबी जांच को लेकर के एफआईआर को लेकर के रिकमेंडेशन जो है वो भेजी गई थी जो डीजीएचएस की चीफ थी डॉक्टर वत्सला और उसके अलावा अकाउंटेंट्स को लेकर के। सरकार का मानना है कि जितना भी ये सीपीए के अंदर अनियमितताएं हुई हैं उसमें परचेज को लेकर के जिस तरीके से परचेजिंग की गई लेलन की हो, चाहे वो एक्सरे मशीन्स को लेकर के हो, चाहे वो लैब टेक्नीशियंस को लेकर के हो, उन तमाम चीज़ों को लेकर के जो भी अनियमितताएं हुई हैं उनकी जाँच जो है वो होनी चाहिए। लेकिन अब इस पूरे मामले पर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है वो पूरी जाँच जो है वो करेगा कि आखिरकार वेंडर्स को किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाया गया, कौन कौन कौन से वेंडर्स जो हैं इस पूरे गेम के अंदर इन्वॉल्व थे, किस तरीके से पूरा ये लेन देन हुआ, कौन कौन लोग इस पूरे मामले के अंदर इन्वॉल्व है, उस पूरी जांच जो है वो अब ईडी जो है वो करेगी।
14: जी शुक्रिया जान।
0: फायदा पहुंचाया गया, कौन कौन कौन से वेंडर्स जो हैं इस पूरे गेम के अंदर इन्वॉल्व थे, किस तरीके से पूरा ये लेन देन हुआ, कौन कौन लोग इस पूरे मामले के अंदर इन्वॉल्व है, उस पूरी जाँच जो है वो अब ईडी जो है वो करेगी।
14: जी शुक्रिया इस जानकारी के लिए। And on that note, it is time for us to slip into a very short commercial break. On the other side, we'll get you details of the Taratala tragedy that has rocked Kolkata. The death toll that has now risen to 8 after the shed that collapsed. 5 have been arrested. Chief Minister Shivendu Adhikari has ordered an SIT probe and city-wide project audit.

0: And we cut across to more breaking news coming in. It's a big revelation in the Kolkata shed collapse, where more influential links to the owner and developer have now come to light. Developer Ajgar, who was seen with former TMC Minister Firhad Hakim. Pictures of Ajgar with Firhad Hakim that have been seen at multiple events. Now, question that is being raised, did the TMC look away when the killer shed was being built? Was there active connivance of top TMC Netas in approval? India Today, having accessed the link between Taratala contractor Asghar Hussain and former Mayor Firhad Hakim, there have been multiple pictures where they've been seen together. Asghar Hussain, the contractor and developer behind the Taratala warehouse that collapsed fatally, has been spotted with former Trinamool Congress Minister and former Kolkata Mayor Firhad Hakim. Those pictures that we've also put out on your screens of how the camaraderie, the bonhomie is very clear. The images that show Asghar at multiple political and personal events that were attended by Hakim. Asghar held considerable influence within the Trinamool Congress. The link that has emerged as investigations into the Taratala collapse focus on construction, approval, supervision and accountability, and no statement that has been issued yet by Hakim or the party. Let me take this to my colleague Anirban, joining us on the broadcast. Anirban, the death toll that has risen to 8, and who is responsible for these lives being lost? With regards to the link that has surfaced between the contractor and Hakim, what is one to make of it? Was it a leeway that was given by the TMC?
1: Well, you see that what we have access to the social media as well as the account of this Asghar Hussain. We have seen that lots of photographs with Firhad Hakim as well as the influential political TMC leaders. And we have...
0: Yeah, I'm having to interrupt you here. Cutting across to this live news conference by Ravi Shankar Prasad.
2: है उसको किस तरह से अब्यूज किया गया. टुडे इज द टाइम टू रिकॉल एज टू हाउ वाइल इंपोजिंग इमरजेंसी ऑल द साइन पोस्ट ऑफ डेमोक्रेसी द इंस्टीट्यूशन वी आर ब्रूटलाइज बाय देन कांग्रेस गवर्नमेंट हेडेड बाय इंदिरा गांधी. आपको मालूम है कि इमरजेंसी लगाने का जो प्रस्ताव था उस पर कैबिनेट की सहमति नहीं थी. रात के अंधेरे में फखरुद्दीन रही अहमद तत्काल राष्ट्रपति से दबाव देकर साइन कराया गया और सुबह 6 बजे पोस्ट फैक्टो अप्रूवल के लिए कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई. उसके बाद सभी नेताओं की गिरफ्तारी हुई. आरएसएस पर बैन लगा. क्या जेपी, क्या मुरारजी भाई, क्या अटल जी, क्या अडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस तो संघर्ष कर रहे थे, मधु दंडवते, ये सभी गिरफ्तार हुए. मित्रों, जेल में जो तांडव हुआ है उसकी कहानी बहुत आई है. मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं. जेपी को गिरफ्तार करके रखा गया था हरियाणा में एक गेस्ट हाउस में. तो जेपी सुबह में जलपान कर रहे थे तो देखे सामने मुरारजी भाई टहल रहे हैं. उनको ऊपर रखा गया था. जेपी ने कहा मुझे उनसे मिलने दो. कहा आप नहीं मिल सकते. कहा ऐसा करो हम लोग को साथ नाश्ता करे दो. कहा आप नहीं कर सकते. ऐसा करो हम दोनों जलपान करेंगे तो हम लोग बीच में बैठ जाना. कहा नो. आप समझ सकते हैं कि जेपी मीसा में बंद है. सामने मुरारजी भाई हैं, आप मिल नहीं सकते. अटल जी, अडवाणी जी बेंगलोर जेल में गिरफ्तार हुए. मित्रों, जिस तरह से जेल में अत्याचार किया गया उस पर कई पत्रकारों ने किताबें लिखी हैं. विशेष रूप से मैं कूमी कपूर की किताब का उल्लेख करना चाहूंगा जो दिल्ली में खुराफात हुई. और उस समय दिल्ली में एक एसडीएम होते थे नवीन चावला, जिनको पुरस्कार में बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया. उनको निर्देश था कि सबों को टिन के शेड वाले सेल में रखो ताकि गर्मी से परेशान हो और टूटे. यही देशभर में चला. बिहार में थोड़ी हालत बेटर थी क्योंकि हम लोग पहले से संघर्ष कर रहे थे तो थोड़ा उन्होंने देखा था. हम लोग की बहुत पिटाई हुई थी. मित्रों, मानवता को शर्मसार करने वाली इतनी घटनाएं हुई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के नाखून नोचे गए। मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, नसबंदी दिल्ली में जो हुई, आप सभी पत्रकार पढ़े होंगे, तेरे को पेंशन चाहिए नसबंदी का कैंडिडेट ला, तेरे को प्रमोशन चाहिए नसबंदी का कैंडिडेट ला, पूरे देश में अब आप समझ सकते हैं कि जिसकी शादी भी नहीं हुई है उसको भी जबरदस्ती नसबंदी, क्योंकि सीएम को भी था कि जितना नसबंदी का सर्टिफिकेट दोगे संजय गांधी की नजरों में उतना ऊपर जाओगे। तो ये मैंने आपको बताया ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ क्या हमला। अब मैं आता हूं प्रेस के खिलाफ। दिल्ली में जो बहादुर शाह

बिजली काट दी गई थी 24 के रात में ताकि अखबार नहीं निकले, और यह हाल था। लोग पूछ रहे हैं कि कुछ नहीं छपेगा, कई अखबारों ने अपना ब्लैंक संपादकीय लिखा। आपको मालूम है कुलदीप नायर की गिरफ्तारी हुई थी मीसा में, बड़े संपादक बनकर दिए गए, जेपी के पक्ष में लिखते थे। बाकी कई बड़े पत्रकार, मैं क्या नाम लूं, यश निहाल सिंह हो या बाकी हो, इन सबों ने कहा वी विल नॉट राइट आवर एडिटोरियल्स। इतना अत्याचार किया गया, और आज जो लोग मीडिया पर हमला करने की बात करते हैं, बिका हुआ मीडिया है, उसमें इमरजेंसी में देखें, उनका एक चीफ सेंसर ऑफिसर था, बिना उसके अप्रूवल के कोई समाचार नहीं छपेगा। और संजय गांधी की देशभर में यात्रा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगा, यह बात शाह कमीशन की रिपोर्ट में सवाई है। और बाकी तारीफ करने वाले तो लोग थे ही, आडवाणी जी ने एक बहुत अच्छा सेंटेंस कहा था, सम जर्नलिस्ट व्हेन दे वर कॉल्ड टू बेंड दे प्रेफर टू क्रॉल, कुछ जर्नलिस्ट से जो झुकने को कहा गया तो वो दंडवत करने को तैयार थे। ये सच्चाई है। बहुत से वेल नोन नेम है, नाम क्या ले मैं आपको मालूम है, कुछ न्यूज पेपर्स थे उसमें भी कई लोगों ने हिम्मत दिखाई। मुझे याद है कि छात्र संघर्ष नाम का एक हम लोग अंडरग्राउंड पेपर निकालते थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का मुझे सौभाग्य मिला था, अंडरग्राउंड में काफी एक्टिव था। आपको मालूम है जेपी की किडनी खराब हो गई थी, वो मुंबई के जसलोक अस्पताल में थे 26वें फ्लोर पर, तो कहा गया इनको थोड़ा धूप चाहिए, मना कर दिया गया, धूप में बैठेंगे तो नीचे मुंबई की जनता देखेगी तो उनको वेव करेगी। बाद में आज वो मर गए, सोली सोराब जी, मैं उनका अभिनंदन करूंगा, उनका आई एम गोइंग टू मूव द बॉम्बे हाईकोर्ट। तब उनको एक घंटा बैठने की अनुमति दी गई, उनकी किडनी खराब हो गई थी। जब वो मरने वाले थे तो उनको छोड़ा गया, हम अंडरग्राउंड रेसिस्टेंस को देख रहे थे। आज कई चीजें बड़ी भावुकता से याद आ रही हैं, तो पटना से जो परिचित थे उनको याद होगा, पटना में दरभंगा हाउस में हम लोग का एमए का क्लास चलता था, हम लोग तो सब लोग भागे हुए थे, क्या क्लास वास करना, गिरफ्तारी सब, पढ़ाई लिखाई सब तो अपनी जगह थी। तो हमने कहा जेपी को, वहां एक बहुत फेमस काली का मंदिर है, तो जेपी को दर्शन के लिए बुलाएंगे, क्योंकि कांग्रेसियों ने कहा था जेपी पागल हो गए। तो जेपी आए, देख करके पूरी स्टूडेंट दौड़ पड़े, तो उन्हें पुजारी को गिरफ्तार कर लिया जिसने उनको माला पहनाया था, और बाद में जो किया सो किया ही आपको मालूम है। तो क्या नसबंदी, क्या नेताओं के साथ अत्याचार, क्या संघ के स्वयंसेवकों के साथ अत्याचार, क्या मीडिया के साथ अत्याचार। पांचजन्य, मदरलैंड, ऑर्गेनाइजर, इंडियन एक्सप्रेस, मैं नाम ले रहा हूं, दे शोड ग्रेट फाइट ऑफ रेसिस्टेंस। अब थोड़ा मैं पॉलिटिकल बातें करना चाहता हूं। आजकल इनके पुत्र लोग जो हैं तो उनको स्मरण दिलाना जरूरी है। लालू जी भी जेल में थे, मुलायम सिंह यादव भी जेल में थे, अखिलेश बाबू, हाँ, और डीएमके के मित्रों आपको बताना जरूरी है कि आपकी करुणानिधि की सरकार को इंदिरा ने डिसमिस कर दिया था। हाँ, तो देख रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में आया मीडिया, ह्यूमन डिग्निटी। अब मैं आता हूं पार्लियामेंट पर। पार्लियामेंट की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया, और जब अपोजिशन के लोग जेल में थे तब संविधान का 42वां संशोधन पारित किया गया। और संजय बाबू जो सेक्युलरिज्म की बात होती है ना, उसी समय लाया गया था, और सोशलिज्म प्रीएम्बल में, तो सेक्युलरिज्म की बात करने वालों को मालूम है ना चाहिए कि विपक्षी जब जेल में थे तो ये सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म, पीएम के खिलाफ कोई केस नहीं होगा, और रिट्रोस्पेक्टिव तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को बदल दिया गया ताकि पीएम के इलेक्शन को चाय नहीं हो सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब चूंकि ये अमेंडमेंट है तो वी कैनॉट इंटरफेयर। तो संसद के साथ
जो बदसलूकी की गई,

0: पांच साल का छह साल विपक्ष जेल में मनमानी तरीके से कानून बन रहा है और संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है. What I am saying, all the shades of democracy were murdered during emergency. सारे संवैधानिक संस्थाओं की हत्या की गई उस समय. जरा मैं जुडिशरी पर बोलना चाहता हूं. आई एम वेरी प्राउड ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया, जिन्होंने हिम्मत दिखाई कि नहीं, गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो हम इंटरफेयर करेंगे. हम लोग को तो इमरजेंसी के पहले ही बंद किया गया था. मैं एडवाइजरी बोर्ड में कमर में रस्सा लगा के गया था पटना हाई कोर्ट में. जज साहब से कहा मैं बहस करूंगा, मैं तैयारी करके गया था. और उसकी एक बहुत रोचक कहानी है कि जजेस ने देखा मेरे पिताजी का नाम तो उनको फोन किया कि आपका बेटा आया था, अच्छा बहस किया था. तो कहा आप छोड़ रहे हैं कि नहीं? काम को पूरी कोशिश कर रहे हैं. और नेक्स्ट डे मुझे दो साल के लिए कन्फर्म कर दिया एडवाइजरी बोर्ड में. बाद में रिट में हम लोग छूटे. इन फैसलों के खिलाफ भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई. एडीएम जबलपुर वर्सेस शुक्ला ये केस है. और जब बहस हो रही थी तो वहां पर जजेस ने उस समय के अटॉर्नी जनरल नीरेंडे से पूछा कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल, इफ ए डिटेनी इज किल्ड इनसाइड द प्रिजन, डज ही हैव एनी रिलीफ ड्यूरिंग इमरजेंसी और नॉट? मिस्टर एजी, अगर किसी डिटेन्यू को मार दिया गया जेल में तो उसको कोई राहत मिल सकती है? उनका नो मिलॉर्ड, ऑल द एवेन्यूज आर क्लोज्ड. और आज मैं बहुत पीड़ा से कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस आर्गुमेंट को सही माना कि उम्मीद करते हैं. इट वॉज अ डे ऑफ ग्रेट शेम फॉर द जुडिशरी ऑफ इंडिया व्हेन दे बकल्ड बिफोर द एट्रोशियस गवर्नमेंट इंपोजिंग इमरजेंसी. एक जज ने हिम्मत दिखाई थी, डिसेंट दिया कि नहीं, इमरजेंसी में भी मौलिक अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार का सम्मान होगा, उसका अतिक्रमण होगा तो हम इंटरफेयर करेंगे. उस बहादुर जज का नाम था एचआर खन्ना और उनको इन्होंने सुपरसीड कर दिया. सिर्फ 40 दिन के लिए वो चीफ जस्टिस बनते, सिर्फ 40 दिन के लिए. लेकिन ये इतनी बेशर्म सरकार थी कि उनको सुपरसीड कर दिया क्योंकि उन्होंने नागरिक के अधिकारों की बात की थी. मुझे भी याद है न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन पर एक संपादकीय लिखा था, ब्रेव इंडियंस, इफ डेमोक्रेसी रिटर्न्स टू इंडिया प्लीज हैंग द पोर्ट्रेट ऑफ दिस पावरफुल जज इन द सुप्रीम कोर्ट. उसको हमने कई जगह बांटा था फोटोकॉपी. आज उनकी तस्वीर कोर्ट नंबर 2 में लगी हुई है. तीन चार जजेस को सुपरसीड किया गया. ये क्या बात करेंगे जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए. तो इसलिए आज 50 साल हो गए तो पार्टी को ऐसा लगा कि देश को बताना चाहिए कि इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है. और आपसे मैं ऐसा आग्रह नहीं करता, लेकिन आज विनम्रता से आग्रह करूंगा कि इस विषय को रखना चाहिए. मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा. सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था. और कई बार तो ऐसा हुआ कि पुलिस वाले उनको खोजते आए हैं, वो सामने से चले जा रहे हैं. कहा नरेंद्र मोदी कहां रहते हैं जानते हो? कहा मुझे तो पता नहीं है. ये सारी बातें आज जग जाहिर है. और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई. मैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी एक व्यक्ति की कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश की स्वतंत्रता को बंधक बना लिया गया. ये लोग हमसे संविधान की बात करते हैं, बेशर्म लोग हैं. दी शेमलेस पीपल हु आर लीडिंग द कांग्रेस पार्टी शोकेस इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन की. संविधान के हम रक्षक हैं, संविधान के भक्षक थे और आज भी हैं कांग्रेस पार्टी का माइंडसेट, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। बाद में 77 में इलेक्शन हुआ, जनता ने एक बार अपना दिखाया और जनता जब जागती है तो बहुत कसकर जागती है, जैसा भी बंगाल में जागी है। जब आप
1: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
2: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
3: Tune In Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on Tune In. Plus, you can listen to Tune In on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on Tune In.

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Alongside Shraddha Kapoor, the film also stars Randeep Hooda and Mohammad Zeeshan Ayub in pivotal roles.
1: आपको पता है कि सब लोग आपके पीछे से आपको क्या क्या बोलते हैं?
2: छलावा, चुड़ैल, पिशाचिनी, सोनम बेवफा, ठुकरा दिया तेरा प्यार, अब इंतकाम देखेगी।
0: Meanwhile, Shraddha was last seen in the blockbuster horror comedy Street 2.
3: महापूजा के आखिरी दिन तक उसे रोकना ही होगा, वरना महाविनाश होगा।
4: चंदेरी को कोई मुसीबत से बचा सकता है तो तुम हो।
0: Which emerged as one of the biggest box office successes of the year 2024. The film also starred Rajkumar Rao, Pankaj Tripathi, Abhishek Banerjee and Apar Shakti Khurana in pivotal roles.

पूरे देश में चर्चा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी और सम्मानित बहुत पुराना विश्वसनीय एक मीडिया हाउस ने इसको पब्लिक डोमेन में लेके आया। 30 घंटे बीत गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने कल सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी की प्रदेश इकाई और मोहन यादव जी से प्रश्न पूछे थे। 30 घंटे तक कोई जवाब नहीं, एक जवाब आया है। उन्होंने कहा बात सवाल जमीन का था, बात जाति की करने लगे। ओबीसी की जाति का मुख्यमंत्री कांग्रेस को पच नहीं रहा है, ये जवाब था। ये मोदी मॉडल, नया मोदी मॉडल, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न मेरे कोई आगे है न कोई मेरे पीछे। देशवासियों मुझ पे भरोसा करो।

0: ग्राम पुलिस ने चीफ मिनिस्टर का नाम लिया है, हालांकि भगवंत का नाम नहीं लिया, लेकिन पड़ोस के सीएम का के बारे में इन्होंने बताया है। और जो पूरी जानकारी दी है उसके मुताबिक पंजाब के कुछ जो अधिकारी थे उन्होंने जसप्रीत से कांटेक्ट किया और कहा कि एक वीडियो है उसकी रिपोर्ट बनानी है और हमारे हिसाब से वो रिपोर्ट बनानी होगी, जिसके बाद जसप्रीत को 10 लाख रुपए दिए गए। जसप्रीत ने दो ऐसे लोगों से कांटेक्ट किया जो सरकारी डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, लैब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लैब असिस्टेंट भी नहीं है। उन्होंने फेक रिपोर्ट तैयार की अरुण और अंकित ने, और जो दो लैब का एड्रेस दिया गया था वो ग्राउंड पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो कंप्लीट फेक रिपोर्ट तैयार की पंजाब के अधिकारियों ने, ऐसा गुरुग्राम पुलिस का दावा है। और बकायदा लाइफ थ्रेट भी दिया जा रहा है जसप्रीत को, यह भी दावा किया गया। तो FIR रजिस्टर्ड किया गया है, अरुण और अंकित जिन्होंने फेक रिपोर्ट तैयार की थी उनको गुरुग्राम पुलिस ने अरेस्ट किया है, वो दोनों 8 दिन की पुलिस कस्टडी में है। जसप्रीत को 10 लाख रुपए पंजाब के अधिकारियों ने जो दिए थे वो अकाउंट फ्रीज कर लिया गया है। गुरुग्राम के जिस होटल में पंजाब के जो अधिकारी थे और जसप्रीत के साथ मीटिंग हुई थी उस CCTV को सीज किया गया, उसको एनालाइज किया जा रहा है और इस पूरे मामले की इंट्रोगेशन अब गुरुग्राम पुलिस और आगे लेकर जा रही है।
1: ओके अरुण, वेरी इंटरेस्टिंग। सो न्यू ट्विस्ट हैज कम इन दिस केस, वी विल बी ट्रैकिंग ऑल दैट एंड मोर। So what I'm going to do now is leave you with this report coming in from Lucknow. Coaching centers across Uttar Pradesh are facing the heat. Lucknow, Greater Noida, Prayagraj, Mathura, a massive ceiling drive is underway. Authorities are hunting for safety violations. But again, it's taken a tragedy to trigger action that should have been routine. India Today's special report here coming in from Uttar Pradesh, leaving you with this one. I'll see you at 4 p.m. from India Today's newsroom.
2: Lives lost in Lucknow. 15 families shattered forever. And now a statewide crackdown is underway. From Lucknow to Greater Noida, Prayagraj and Mathura, officials are raiding coaching centers, inspecting buildings and sealing premises over fire safety violations. In Lucknow, teams from the Lucknow Development Authority and the Fire Department arrived at the Allen Coaching Center to inspect and seal premises found violating norms.
3: अलीगंज क्षेत्र में जो दर्दनाक हादसा हुआ उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी थोड़ी सी भी ढिलाई नहीं बरतनी है हमें, चाहे फायर मानक हो, चाहे अगर वहाँ पे मास गैदरिंग होती है तो LDA द्वारा सेक्शन मैप में कोई कमी हो उस पर हमें पूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। हमारे जोन में अभी 19 जगह विजिट हो चुका है और 15 जगह हमने सील किया हुआ है।
2: The crackdown was also seen in Greater Noida. Teams from the district administration, police and fire department carried out surprise inspections at coaching hubs. Two coaching centers were sealed.
4: इंटरनली इन्होंने जो है स्ट्रक्चर अपने आप से खड़ा कर लिया विदाउट परमिशन, उसकी वजह से इनके कुछ कमरे हम सील करते, पूरी कोचिंग सील नहीं कर रहा है, प्रशासन सील कर रहा है, इनको सूचित किया है, प्रशासन सील कर रहा है, आज कार्रवाई चल रही है।
2: इन प्रयागराज द इंस्पेक्शंस टुक अ ड्रामेटिक टर्न. When officials reached a coaching institute in civil lines, they found the premises locked from the outside. Students and staff were allegedly still inside. And in Mathura, the administration sealed at least 6 coaching centers and commercial establishments during a joint inspection drive. Visuals showed students standing outside as officials locked and sealed premises found violating safety norms.
5: Mathura Janpad में जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उसमें क्या सुरक्षा मानक अनुरूप हैं कि नहीं, इसके संबंध में एक संयुक्त टीम द्वारा आज सुबह से ही मथुरा में जितने भी व्यवसायिक ऐसे प्रतिष्ठान हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, होटल से इनका निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें से जो भी मानक अनुरूप नहीं पाए गए हैं, जो जहां पे फायर सेफ्टी मेजर्स उपलब्ध नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
2: अक्रॉस उत्तर प्रदेश कोचिंग सेंटर्स आर बीइंग सील्ड। But no crackdown can bring back the 15 lives lost in Lucknow. As officials inspect buildings and issue notices, families are demanding something more important than action. That is accountability. With Bureau Inputs, with Madan Gopal Sharma, Arun Tyagi and Pankaj Srivastav, Bureau Report, India Today.
6: You're watching India Today Television. India Today Television Studio is safe from dengue, protected by All Out.
7: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
8: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
7: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
9: Today's Match Day Preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France in Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at minus 150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is minus 210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports Match Day Preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
10: Jack FM, now playing what we want, commercial-free, on TuneIn Premium.
11: What about me, Jack? What about me?
10: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
12: Well played, Jack. Well played.
10: Jack FM, playing what we want.

0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती?
0: तुम साइन करोगे नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट?
0: आए तुम साइन करोगे नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

मुख्यमंत्री बनने के बाद 168 एकड़ में से 111 एकड़ उनके परिवार ने उस क्षेत्र में खरीदी जहां ये महाकुंभ आने वाला है। तो ये तो जानकारी थी, शेयर मार्केट की भाषा में इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। ये इनसाइडर ट्रेडिंग है क्योंकि आपके पास जानकारी है, आप अपनी जमीनें बढ़ाए जा रहे हो। अपना एक लैंड बैंक पांड्या खेड़ी में 18 एकड़, उज्जैन में जहां 2000

2035 के मास्टर प्लान पर काम होना है। वहां मोहन यादव जी के परिवार ने जमीनें खरीदी, पेट काट कर लोग पैसा बचा बचा कर तीर्थ जाते हैं। हमने अपने बुजुर्गों को जाते हुए देखा, पैसा बचा बचा कर, और वहां दान पात्र में डालते हुए जिस आस्था से वो उसमें दान पेटी में पैसा डालते थे, वो एक बड़ा करुणामयी दृश्य होता था। ऐसे पैसे को लूटना, ऐसे चोरी करना, ये लोगों की आस्था के पीठ में खंजर घोंपने के बराबर है। अयोध्या में जो हुआ,

0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती?
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट?
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

मुख्यमंत्री बनने के बाद 168 एकड़ में से 111 एकड़ उनके परिवार ने उस क्षेत्र में खरीदी जहां ये महाकुंभ आने वाला है। तो ये तो जानकारी थी, शेयर मार्केट की भाषा में इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। ये इनसाइडर ट्रेडिंग है क्योंकि आपके पास जानकारी है, आप अपनी जमीनें बढ़ाए जा रहे हो। अपना एक लैंड बैंक पांड्या खेड़ी में 18 एकड़, उज्जैन में जहां 2035 के मास्टर प्लान पर काम होना है, वहां मोहन यादव जी के परिवार ने जमीनें खरीदी। पेट काट कर लोग पैसा बचा बचा कर तीर्थ जाते हैं, हमने अपने बुजुर्गों को जाते हुए देखा, पैसा बचा बचा कर, और वहां दान पात्र में डालते हुए जिस आस्था से वो उसमें दान पेटी में पैसा डालते थे, वो एक बड़ा करुणामयी दृश्य होता था। ऐसे पैसे को लूटना, ऐसे चोरी करना, ये लोगों की आस्था के पीठ में खंजर घोंपने के बराबर है। अयोध्या में जो हुआ,

0: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
1: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
0: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: अहदेदारों के परिवारों को ये छूट दी जा रही है। पहले सील लग रही है और फिर सील खुल रही है, तो इससे साफ पता चल रहा है कि अधिकारी भी दबाव में हैं। आपका कानून क्या सिर्फ ये 22 घंटे 23 घंटे के एक दिखावे के लिए है क्या?
1: लखनऊ वॉज मेंट टू बी द वार्निंग, बट इट सीम्स सेफ्टी विल ऑलवेज बी सेकंड टू सिफारिश इन इंडिया व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद VIPs। विद सिमर चावला इन कानपुर, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टुडे।
2: Okay, from that story, let's turn to some good news. From apples and kiwis to saffron and medicinal herbs, one man in Kashmir is turning his rooftop into a thriving organic farm. Meet Harun Rashid from Shopia, whose innovative terrace farming model is drawing attention. Take a look.
3: Organic farm on terrace cultivating many varieties of fruits, vegetables and medicinal plants. Harun Rashid's innovations in farming has made him popular in Shopia. Rashid, who started terrace farming in 2017, has transformed his rooftop into a flourishing agricultural space using chemical-free and environmentally sustainable practices.
4: तो जो हमारा ये टेरिस गार्डन है ये 40x42 स्क्वायर फुट पर हमने ये सब्जियां लगाई। इसमें एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर और खासकर जो मेडिसिन प्लांट, हमने 3 सालों से ये मेडिसिन प्लांट और हॉर्टिकल्चर इसमें इस्तेमाल किया। बाकी जो हमारे पास वैरायटी है ये करीब 100 एबो वैरायटीज है।
3: Rashid's terrace farm features a diverse collection of crops, including unique apple varieties, cherries, kiwis, oranges, lemons, and several medicinal plants. He successfully cultivated saffron, which is usually grown in Pampore region.
4: Saffron, jo hai, ye aasan hai kyunki district Shopian mein yahan jo horticulture hai, isme log nahi laga sakte. हमने ट्राई किया, यहाँ जमीन में पैदावार खूब होगा, ये जो बनाएगा होगा, क्योंकि हमने यहाँ टेरिस गार्डन में आपने देखा तो हमें कामयाबी मिला। अभी आज भी हमने एक ट्रायल किया, ये सैफरान कारण आज भी लगाया हमने देखा, हमें देखना है कि इसमें कितना पैदावार प्रोडक्शन हमें मिलेगा।
5: तो लोगों में भी अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है कि हम जो ये पेस्टिसाइड बेस्ड जो जितनी भी सब्जियां हम नहीं खाना चाहते हैं, तो उसका अल्टरनेटिव हमने यही देखा कि जिन लोगों के पास टेरेसेस है उन टेरेसेस को क्यों ना यूटिलाइज किया जाए। तो इसका जो मेन मकसद था, हमने इसको कैपेक्स में जैसे RKVY जो स्कीम्स गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही हैं उनमें थोड़ा सा इसको असिस्टेंस दी, मगर जो बेसिक चीज है कि इस फार्मर ने खुद से अपनी मेहनत की।
3: Rashid says he has received full support from various government departments for all his endeavors. With Irshad Malik, Bureau Report, India Today.
2: Nice to always get some good news stories, but I want to leave you tonight with something that's not so good news. 2 strong earthquakes striking Venezuela within less than a minute today have caused extensive damage and a huge death toll that has crossed 100 and counting. Our thoughts are with the people of Venezuela, a country that has suffered much in recent times. Those are the images I leave you with, frightening as they are. But thanks for watching. You stay well, stay safe. Good night, Shubh Ratri, Jai Hind, Namaskar.
6: No ticket, no line, just Showtime. Qello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
7: My beauty doesn't come from a lab. Comes from my roots, from centuries of wisdom and from nature's lab. This is Hexa Organics, honest herbal heritage.

0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती?
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट?
0: आए तुम साइन करोगे या नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: Good evening, you're watching India First. I'm Gaurav Savant. Big story coming in. It's a major development in the Sri Ram Janmabhoomi Temple alleged donation theft case. Based on the preliminary report filed by the special investigation team, an FIR has finally been registered in the Sri Ram Janmabhoomi donation theft scam. 8 people have been named in this FIR, apart from several unnamed individuals. Latest information that is coming in, those who've been named in the FIR are those who were allegedly responsible for counting that money, alleged handling of the donation funds, the movement, some who were apparently not properly following the dress code at the Sri Ram Janmabhoomi Temple Money Counting Center. Avinash Shukla, Anukalp Mishra, Manish Yadav, Ramashankar Mishra, Tinu Yadav, Ramashankar Yadav. These are some of the individual sources tell India Today. They've been named in the FIR. This is the first information report. The 3-member SIT had travelled to the Sri Ram Janmabhoomi temple where the money was collected. Where was that money counted? What was the movement? What was the role of the State Bank of India officials? Who had they in turn allegedly sublet or given the process of counting and transportation of money to? All of that has painstakingly been put together. The FIR has been filed on the complaint of the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust. So the trust finally moved to have an FIR on the basis of the SIT preliminary report. The FIR has been registered under section 306. This is theft by a clerk or a servant. Under section 3165, this is criminal breach of trust by a public servant or banker or merchant or attorneys or their agents. Under section 317-4, which is habitually receiving or dealing in stolen property, knowing it to be stolen. So now with this FIR, and perhaps this is where the agyat or the unknown become extremely interesting. Who were the unknowns who received proceeds of crime? Because this is a huge breach of trust in the faith that devotees had. They donated to the temple. And then there are staff and those who are handling the donation who stand accused of pilfering the donation. And it's not just cash. Do keep in mind that it is apart from cash, there is also the allegation that silver, gold and other precious jewels that were donated to the temple, silver bricks that were donated to the temple, were they properly audited? Have they been kept? Have they been used? Or is there merit that this was more than just pilferage of just a few hundred or thousand or crore rupees? This is a much bigger scam. And this investigation hopefully will reveal the truth. Because Section 317-5 is assisting in concealing, disposing of or making away with stolen property. And that's a very serious charge. Again, it comes read with Section 61, which is criminal conspiracy, and Section 3-5, which is common intent, because it's more than one person, it's more than one individual, it's a group of people who came together with a common intent to commit a crime. And this is a very serious crime. This actually is sin. But look at the Bharat Nyay Sahita. When you go with the Dand Sahita and the Nyay Sahita, there was common intent, joint criminal liability. The Uttar Pradesh police say there will be arrests and strict action will be taken. This preliminary action, the registration of the FIR on the basis of the special investigation team report, is just that very important step one that's been taken so far. It's been taken on the basis of certain facts that have been revealed in the preliminary investigations. All eyes now on the SIT returning to Ayodhya. When the SIT returns to Ayodhya, they will then, and a much bigger team now gets roped in. We are told there are officials of multiple departments that are being roped in to carry out a much wider investigation. Where did this cash go? Where did that silver jewelry, gold jewelry, precious jewels, where did all of all of that proceeds of crime, where did they go? Who sold it? Who bought it? Did they buy very expensive property with this? All of that is a matter of investigation. I quickly want to cut across to my colleague Maria Shakil, joining us with the latest on this big story. Maria, what more do we know on the basis of the SIT and FIR has been registered? The details of the accused. Now you have some people who are named as accused, and then there are some unknown. What more do we know?
1: Yes. So, Gaurav, remember the SIT, the Special Investigation Team of the UP government, had flagged a number of issues, which had included irregularities in counting, irregularities in the manner in which the record keeping, which was happening in Ayodhya of all the offerings, and even missing footage of the counting process, which was essentially the CCTV footage, were dysfunctional. Now, what the SIT, post the SIT, remember the SIT report was submitted to the Home Secretary only 48 hours ago, Gaurav. And now the details which have come in, and as you pointed out rightly, multiple sections of criminal conspiracy, but there is also an interesting section which perhaps the details would emerge in some time from now, of a possible civil servant. That's what it says. When we look at this particular section, and I will highlight that for you, Gaurav, it says the section is 316.5 of the BNS, which says the criminal breach of trust by a public servant, banker, merchant, broker, attorney or agent. Yes. And the punishment in this particular case is life imprisonment. Of the 8 people whose name are yet to surface, 5 names are known. Most of them are involved in the counting process. They were involved in the upkeep of the entire record keeping, which had to happen. That had not happened. One of them is the driver, or should I say the close aide of the General Secretary of the Trust. That is Tinnu Yadav. Tinnu Yadav worked as a driver to Champat Rai, and his name had surfaced much before other names, and that was there in the public domain. Other names are also important. That is also of Anukalp Mishra. His name has been found in the FIR, and that he was allegedly connected to the donation collection and also the counting operation which was happening in the premises of the Ram Temple in Ayodhya.
0: That's important point to make, Maria. Caesar's wife has to be above suspicion, but here the driver of one of the most important men in the trust has been allegedly named in serious wrongdoings, in serious breach of trust. Stay with me for a moment. I want to bring in Anurag Bhadauria of the Samajwadi Party, who joins us on the special broadcast. Anurag Bhadauria, FIR to darj kar liya gaya hai, namzad FIR hai, 8 logon ke khilaaf hai, kai dharaye lagai gayi hain. Samajwadi Party, jisne ye prashn uthaya tha, is karyawahi se, ab tak ki karyawahi se, kya aap santusht hain? Kis roop mein aap ise dekhte hain?
2: तो इस बात को तो आप मान गए होंगे कि जो समाजवादी लोग कहते हैं, जो समाजवादी ने आवाज उठाई थी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह से कहा था कि आस्था में चोरी हो रही है और वहां पे दान पात्र में गड़बड़ी हो रही है, तो ये बात तो अब FIR हुई है तो कम से कम ये तो साबित हो गया कि वो सच बोल रहे थे। तो दूसरी बात, FIR हुई है, ड्राइवर पे तो हो गई। अब ड्राइवर की इतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती, ड्राइवर बिना जो ड्राइवर जिसका भी होगा तो मालिक के बिना सह पे तो ड्राइवर कुछ कर नहीं सकता। तो मैं तो चाहूंगा कि इसमें छोटे लोगों की जगह बड़े लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बड़े लोगों के बगैर छोटे लोग नहीं काम कर सकते। छोटे लोगों की क्या इतनी हिम्मत और क्या उनकी वो होगी, उनका औहदा क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है उसमें। मैं तो चाहूंगा कोई इसमें बड़े हों या छोटे हों, कोई बचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रभु के आस्था का मामला है, ये हमारे सनातनियों का आस्था का मामला है।
0: ये बड़ी बात आप उठा रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा अनुराग भदौरिया, विस्तार से आपसे इस पर चर्चा भी करेंगे। आशीष श्रीवास्तव, माय कोलीग, नाउ जॉइंस मी फॉर मोर विद द लेटेस्ट फ्रॉम लखनऊ एंड अयोध्या ऑन दिस बिग स्टोरी। एंड आशीष, फॉर मोर विद द लेटेस्ट फ्रॉम लखनऊ एंड अयोध्या ऑन दिस बिग स्टोरी। एंड आशीष, Tinnu Yadav द ड्राइवर has been named. What was his role according to preliminary investigations? Point one. And can it be restricted just to the driver without the person who was being driven, or was there backseat driving here?
3: गर्व किन्नू यादव जो एक बेहद महत्वपूर्ण नाम है इस पूरे प्रकरण में, चूंकि दान जो कथित चोरी का मामला था उसमें एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज में 8 लोगों के नामजद में टिन्नू यादव, आप समझ सकते हैं टिन्नू यादव वो शख्स है जो एक ब्रिज की तरह है, और ब्रिज की तरह इस वजह से भी है क्योंकि वह सीधे ट्रस्ट के लोगों के साथ में जुड़ा हुआ था और उसके पास इतनी अथॉरिटी थी कि वो ट्रस्ट के जो राम मंदिर के अंदर क्या होना है और कैसे होना है, मतलब ही वॉज जस्ट मैनेजिंग एवरीथिंग, सब कुछ वो मैनेज कर रहा था। और यही वजह है कि टिन्नू यादव के पास यहां तक जो वायरलेस सेट है वो तक रहता था कि वो कैसे पूरे वायरलेस पे सबको सूचित करता था कि कौन सी गाड़ी अंदर आनी है या कैसे आनी, तो कहीं ना कहीं उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर रखा गया था, उसको सारे एक्सेस दिए गए थे कि वो राम मंदिर में क्या एक्सेस होना है, तो ये ट्रस्ट के पदाधिकारियों के द्वारा ही दिए गए थे और इसी वजह से उसकी इतनी कह सकते हैं कि जो बड़ी है इसकी जो पोजीशन बड़ी थी इसका, जो जिसने जिस तरीके से ड्राइवर होने के नाते भी उसने जो राम मंदिर के पूरे इस प्रकरण मामले में सबसे बड़ा रोल भी है उसी का। यही नहीं, जो 8 लोग और नामजद हैं इस पूरे मामले पर, तो कहीं ना कहीं सबकी भूमिका एसआईटी ने जो संतुष्टि की है वो बहुत ही बेहद सख्त रवैये के साथ की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्मली एसआईटी ने जांच करके की हो, एसआईटी ने जो इनिशियल स्टेज पे जांच की उसमें सख्त रवैया अपनाया और तब ये नाम दिए हैं। तो यानी कि जो जांच में सबूत मिले हैं वो एक एक सबूत फिल्टर करके सामने आ गया है कि कैसे भी इनको अब आगे बड़ी कार्रवाई हो, और इसी वजह से टिन्नू यादव का बहुत अहम हो जाता है इस पूरे मामले पे नाम।
4: अच्छा, टिन्नू यादव कहने को तो एक ड्राइवर
3: नहीं आ रहे थे।
4: नहीं आशीष, ये बताइए, टिन्नू यादव कहने को तो एक ड्राइवर है, लेकिन ड्राइवर की क्या इतनी चलती थी कि कहां से कैश कलेक्ट हो रहा है? मतलब ये तो श्रद्धालुओं का दान है, कोई गरीब बुढ़िया है वो 10 ही रुपए दान कर रही है, कोई बड़ा आदमी है जो 1-1 किलो की चांदी की ईंटें दान कर रहा है, और सिंधी समाज का तो कहना है कि उन्होंने 200 इस तरह की ईंटें दान की, वो जानना चाहते हैं उन ईंटों को क्या हुआ, उन्होंने कहा उन्हें रसीद नहीं दी गई, तो ये कौन है वो? एक ड्राइवर तो तय नहीं करेगा रसीद दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, इस पर क्या कोई सफाई या जानकारी मिल पाई आशीष?
3: आईटी देखिए, टिन्नू यादव चूंकि अहम रोल था और अभी जब एसआईटी ने जांच की है हम उसको शेयर भी करेंगे जो जो पॉइंटर्स एसआईटी ने बनाए हैं, लेकिन अभी शुरुआती जांच में जरूर आया है कि टिन्नू यादव को इतनी पावर दी गई थी कि वो बिल्कुल एक्सेस हर जगह कर सकता था, वो दान पात्र में क्या चीजें आ रही उसको देख सकता था, उसको आगे पीछे मैनेज कर सकता था। कहीं ना कहीं टिन्नू यादव के कंधे पर एक तरीके से एक पूरा जोर लगाया गया था कि वो सब कुछ मैनेज करे, चूंकि जो बड़े पदाधिकारी थे वो तो टिन्नू यादव के सहारे ही चल रहे थे, और टिन्नू यादव ऐसा शख्स था जो राम मंदिर के हर चीज को जानता था कि चांदी की वो कहां पर वो है, ईंटें कहां पर हैं, कैसे रखनी है, कहां पर जानी है, मतलब हर एक चीज की जानकारी थी उसको, और बिना सहमति के बिल्कुल टिन्नू यादव नहीं कर सकता, इसमें दो राय नहीं है, चूंकि वो एक मोहरे की तरीके से था और इसी वजह से उसको मोहरा बनाया गया था कि वो इन सब चीजों को मैनेज करे, क्योंकि वहां पर और भी पदाधिकारी हैं, फिर चाहे उसमें अब चंपत राय रहे हो, अनिल मिश्रा रहे हो, या इसके साथ गोपाल राहौर हो, सभी रहे हो वहां पर, उनकी सबकी जानकारी में इस चीज को भी कहीं ना कहीं कंसेंट दिखा है, और इसी वजह से जो एसआईटी ने जो नाम दर्ज किए हैं उसमें सभी अन्य लोगों के भी नाम दर्ज हैं उसका भी खुलासा होगा, लेकिन ये अभी जिस तरीके से टिन्नू यादव के पास जो एक्सेस था वो आप ये समझ सकते हैं कि चाहे वो पास का हो, चाहे वो सीसीटीवी का हो, या इसके अलावा जो एक्सेस दान का है, यानी कि दान कितना आया है उसका रिकॉर्ड का है, और ऊपर रिकॉर्ड किसको भेजना है वो रिकॉर्ड भी टिन्नू यादव रखता था, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में एसआईटी ने इस संलिप्तता को जरूर पाया है, और उसी के बाद ये इतनी बड़ी जो एफआईआर है राम मंदिर मामले में चोरी में जो दान की उसमें दर्ज की गई है। ऐसे ही नहीं,
4: बड़ी बात आप बता रहे हैं, फॉर द बेनिफिट ऑफ व्यूअर्स हु आर जॉइनिंग अस, एन एफआईआर हैज नाउ बीन रजिस्टर्ड इन द श्री राम जन्मभूमि टेम्पल डोनेशन alleged theft केस। इट्स नॉट जस्ट pilferage, इज इट मैसिव मिस appropriation? डज इट रन इन टू crores ऑफ rupees as इज being alleged by some? It's become a massive political case. More details coming in. There are apparently 2 more names that have been named in the FIR, Subhash and Karunesh, and I will get you details about their alleged role. But what is this entire scam all about? There are allegations over donation, missing cash, missing gold jewelry, missing silver bricks, and now question over
0: alleged land deals. The controversy surrounding the Sri Ram Janmabhoomi Mandir is only becoming bigger. The special investigation team appointed by the Yogi Adityanath government has flagged serious procedural lapses. Political parties are now demanding a much wider probe. There are many who say that this is an investigation that should be carried out by the Central Bureau of Investigation and that it should be a court-monitored multi-agency probe. Even the Vishwa Hindu Parishad now is seeking an FIR which has since been registered. We get you more in this report.
5: The shroud of secrecy over the donations made to the Ram Mandir in Ayodhya remains, with the Mandir Trust now refusing to comply with the PMO's directive seeking complete public disclosure of its finances, from donations and bank accounts to land transactions and assets. The man who blew the whistle to the PMO, BJP worker Rajni Singh, says that all he wants is a fair and transparent investigation because the issue concerns the faith of crores of devotees.
6: पारदर्शिता की मांग करना, कहीं से आरोप नहीं होता है. आरोप विपक्षी लोग लगा रहे हैं. आरोप विपक्षी नैरेटिव सेट कर रहे हैं. तो वो नैरेटिव खत्म हो जाए, इसलिए पारदर्शिता जरूरी है.
5: The trust has refused to divulge the information, citing the ongoing SIT investigation set up by the Yogi government. But a day after the three-member special investigation team submitted its interim report, it seems that the probe has soon widened beyond just allegations of missing cash. The probe has reportedly found that employees handling cash donations were not subjected to adequate background verification. It also points to poor enforcement of dress code protocols meant to help identify authorized personnel inside sensitive areas. Investigators further claim that in some instances, employees deliberately positioned themselves in front of the CCTV cameras, potentially obstructing surveillance and enabling theft to go unnoticed. The SIT has also flagged negligence in the transportation of donation boxes from collection points, as well as serious lapses in procedures governing the movement of cash until its final deposit in bank accounts. Meanwhile, the controversy expanded beyond donations. Appearing before the panel, Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh alleged that land purchase using devotees' money was acquired at inflated prices and demanded that the SIT's mandate be expanded to include these land deals.
7: भाई एक ही दिन में आप एक जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं कुसुम पाठक हरीश पाठक से और उसमें गवाह कौन है ऋषिकेश उपाध्याय अनिल मिश्रा भाजपा का मेयर और ट्रस्ट का सदस्य और वही जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी बेच दे रहे हैं ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में 5 मिनट के बाद उसमें भी गवाह कौन है ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा इसका मतलब तो मिल के लूट रहे हैं ना 11 कुल सेट में मैंने कागजात दिए हैं जिसमें 13 जमीनों के दस्तावेज हैं और इसकी गहनता से जांच होगी सारे लोग जेल जाएंगे ये जितने बेईमान हैं
5: With Singh's party leader Arvind Kejriwal demanding a CBI or ED probe ahead of his Ayodhya visit, the issue is becoming a political headache for the ruling state government.
8: लोगों ने जो बहुत भावना के साथ भगवान को हीरे जवाहरात चढ़ाए थे वो चोरी कर लिए 200 करोड़ रुपए तक का बता रहे कैश चोरी कर लिया किसी ने 200 किलो चांदी दी थी वो चोरी कर ली जिस तरह की खबरें आ रही हैं वहां से श्री राम मंदिर जी के में से उससे दिल बहुत आहत है
5: And what is adding to pressure on the Yogi government is that even the VHP has now entered a debate.
9: हमारा सुझाव है कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो हिंदू समाज को ये दिखेगा कि दोषी न्यायालय से दंडित होकर जेल गए हैं तब उनको संतोष होगा
5: Facing the heat, the Yogi government has reiterated that nobody guilty of cheating Hindus of their faith will be spared. What began as allegations of irregularities in the handling of donations and offerings at the Ram Mandir has now snowballed into one of the biggest controversies surrounding Ayodhya since the temple's consecration. Bureau Report, India Today.

0: Now, allegations surrounding the handling of donations offerings in the temple, triggering off that major controversy, prompting a government-ordered SIT probe, and today an FIR being filed against close aides of General Secretary of the Mandir Trust, Champat Rai. As Maria raised the question, just how far does the rot go? Take a look at what we know so far.
1: The shroud of secrecy over the donations made to the Ram Mandir in Ayodhya remains, with the Mandir Trust now refusing to comply with the PMO's directive seeking complete public disclosure of its finances, from donations and bank accounts to land transactions and assets. The man who blew the whistle to the PMO, BJP worker Rajni Singh, says that all he wants is a fair and transparent investigation because the issue concerns the faith of crores of devotees.
2: पारदर्शिता की मांग करना कहीं से आरोप नहीं होता है. आरोप विपक्षी लोग लगा रहे हैं. आरोप विपक्षी नैरेटिव सेट कर रहे हैं. तो वो नैरेटिव खत्म हो जाए इसलिए पारदर्शिता जरूरी है.
1: The trust has refused to divulge the information, citing the ongoing SIT investigation set up by the Yogi government. But a day after the three-member special investigation team submitted its interim report, it seems that the probe has soon widened beyond just allegations of missing cash. The probe has reportedly found that employees handling cash donations were not subjected to adequate background verification. It also points to poor enforcement of dress code protocols meant to help identify authorized personnel inside sensitive areas. Investigators further claim that in some instances, employees deliberately positioned themselves in front of the CCTV cameras, potentially obstructing surveillance and enabling theft to go unnoticed. The SIT has also flagged negligence in the transportation of donation boxes from collection points, as well as serious lapses in procedures governing the movement of cash until its final deposit in bank accounts. Meanwhile, the controversy expanded beyond donations. Appearing before the panel, Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh alleged that land purchased using devotees' money was acquired at inflated prices and demanded that the SIT's mandate be expanded to include these land deals.
3: भाई एक ही दिन में आप एक जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं कुसुम पाठक हरीश पाठक से और उसमें गवाह कौन है ऋषिकेश उपाध्याय अनिल मिश्रा भाजपा का मेयर और ट्रस्ट का सदस्य और वही जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी बेच दे रहे हैं ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में 5 मिनट के बाद उसमें भी गवाह कौन है ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा इसका मतलब तो मिल के लूट रहे हैं ना 11 कुल सेट में मैंने कागजात दिए हैं जिसमें 13 जमीनों के दस्तावेज हैं और इसकी गहनता से जांच होगी सारे लोग जेल जाएंगे ये जितने बेईमान हैं.
1: With Singh's party leader Arvind Kejriwal demanding a CBI or ED probe ahead of his Ayodhya visit, the issue is becoming a political headache for the ruling state government.
4: लोगों ने जो बहुत भावना के साथ भगवान को हीरे ज्वारा चढ़ाए थे वो चोरी कर लिए 200 करोड़ रुपए तक का बता रहे कैश चोरी कर लिया किसी ने 200 किलो चांदी दी थी वो चोरी कर ली जिस तरह की खबरें आ रही हैं वहां से श्री राम मंदिर जी के में से उससे दिल बहुत आहत है.
1: And what is adding to pressure on the Yogi government is that even the VHP has now entered a debate.
5: हमारा सुझाव है कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो हिंदू समाज को ये दिखेगा कि दोषी न्यायालय से दंडित होकर जेल गए हैं तब उनको संतोष होगा.
1: Facing the heat, the Yogi government has reiterated that nobody guilty of cheating Hindus of their faith will be spared.
6: हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने तब भी कहा था और हम पुनः कह रहे हैं कि उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा जो भी दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी जो अपेक्षित निर्णय हैं जनभावनाओं के अनुरूप निर्णय हैं वो भी लिए जाएंगे लेकिन किसी भी दशा में जन आस्था और जनभावना को चोट नहीं आने देंगे.
1: What began as allegations of irregularities in the handling of donations and offerings at the Ram Mandir has now snowballed into one of the biggest controversies surrounding Ayodhya since the temple's consecration. Bureau Report, India Today.

0: कल्चर है, इसमें लोग नहीं लगा सकते। हमने ट्राई किया, यहाँ जमीन में पैदावार खूब होगा, ये जो बनाएगा होगा, क्योंकि हमने यहाँ टेरिस गार्डन में आपने देखा तो हमें कामयाबी मिला। अभी आज भी हमने एक ट्रायल किया, ये सैफरान कारण आज भी लगाया हमने। हमने देखा, हमें देखना है कि इसमें कितना पैदावार प्रोडक्शन हमें मिलेगा।
1: तो लोगों में भी आप धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है कि हम जो ये पेस्टिसाइड बेसिस जो जितनी भी सब्जियां हम नहीं खाना चाहते हैं, तो उसका अल्टरनेटिव हमने यही देखा कि जिन लोगों के पास टेरेसेस है उन टेरेसेस को क्यों ना यूटिलाइज किया जाए। तो इसका जो मेन मकसद था, हमने इसको कैपेक्स में जैसे RKVY जो स्कीम्स गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही हैं उनमें थोड़ा सा इसको असिस्टेंस दी, मगर जो बेसिक चीज है कि इस फार्मर ने खुद से अपनी मेहनत की।
2: Rashid says he has received full support from various government departments for all his endeavors. With Irshad Malik, Bureau Report, India Today.
3: Nice to always get some good news stories, but I want to leave you tonight with something that's not so good news. Two strong earthquakes striking Venezuela within less than a minute today have caused extensive damage and a huge death toll that has crossed 100 and counting. Our thoughts are with the people of Venezuela, a country that has suffered much in recent times. Those are the images I leave you with, frightening as they are. But thanks for watching. You stay well, stay safe. Good night, Shubhratri. Jai Hind, Namaskar.
4: TuneIn has all of your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news...
5: After multiple assassination attempts, they can't even get...
6: They're reliable.
7: Always when I need them.
4: To live sports action.
8: One-hand jam by LeBron on the break.
9: That's another three, Steph Curry.
4: And your favorite music.
10: Well, the dawn begins to crack. It's
4: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.

0: Good evening, you're watching India First. I'm Gaurav Savant. Big story coming in. It's a major development in the Sri Ram Janmabhoomi Temple alleged donation theft case. Based on the preliminary report filed by the special investigation team, an FIR has finally been registered in the Sri Ram Janmabhoomi donation theft scam. 8 people have been named in this FIR, apart from several unnamed individuals. Latest information that is coming in, those who've been named in the FIR are those who were allegedly responsible for counting that money, alleged handling of the donation funds, the movement, some who were apparently not properly following the dress code at the Sri Ram Janmabhoomi Temple Money Counting Center. Avinash Shukla, Anukalp Mishra, Manish Yadav, Ramashankar Mishra, Tinu Yadav, Ramashankar Yadav. These are some of the individual sources tell India Today. They've been named in the FIR. This is the first information report. The 3-member SIT had travelled to the Sri Ram Janmabhoomi temple where the money was collected, where was that money counted, what was the movement, what was the role of the State Bank of India officials, who had they in turn allegedly sublet or given the process of counting and transportation of money to. All of that has painstakingly been put together. The FIR has been filed on the complaint of the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust. So the trust finally moved to have an FIR on the basis of the SIT preliminary report. The FIR has been registered under section 306. This is theft by a clerk or a servant. Under section 3165, this is criminal breach of trust by a public servant or banker or merchant or attorneys or their agents. Under section 317-4, which is habitually receiving or dealing in stolen property, knowing it to be stolen. So now with this FIR, and perhaps this is where the agyat or the unknown become extremely interesting. Who were the unknowns who received proceeds of crime? Because this is a huge breach of trust in the faith that devotees had. They donated to the temple. And then there are staff and those who are handling the donation who stand accused of pilfering the donation. And it's not just cash. Do keep in mind that it is apart from cash, there is also the allegation that silver, gold and other precious jewels that were donated to the temple, silver bricks that were donated to the temple, were they properly audited? Have they been kept? Have they been used? Or is there merit that this was more than just pilferage of just a few hundred or thousand or crore rupees? This is a much bigger scam. And this investigation hopefully will reveal the truth. Because Section 317-5 is assisting in concealing, disposing of or making away with stolen property. And that's a very serious charge. Again, it comes read with Section 61, which is criminal conspiracy, and Section 3-5, which is common intent, because it's more than one person, it's more than one individual, it's a group of people who came together with a common intent to commit a crime. And this is a very serious crime. This actually is sin. But look at the Bharat Nyay Sahita. When you go with the Dand Sahita and the Nyay Sahita, there was common intent, joint criminal liability. The Uttar Pradesh police say there will be arrests and strict action will be taken. This preliminary action, the registration of the FIR on the basis of the special investigation team report, is just that very important step one that's been taken so far. It's been taken on the basis of certain facts that have been revealed in the preliminary investigations. All eyes now on the SIT returning to Ayodhya. When the SIT returns to Ayodhya, they will then, and a much bigger team now gets roped in. We are told there are officials of multiple departments that are being roped in to carry out a much wider investigation. Where did this cash go? Where did that silver jewelry, gold jewelry, precious jewels, where did all of all of that proceeds of crime, where did they go? Who sold it? Who bought it? Did they buy very expensive property with this? All of that is a matter of investigation. I quickly want to cut across to my colleague Maria Shakil, joining us with the latest on this big story. Maria, what more do we know on the basis of the SIT and FIR has been registered? The details of the accused. Now you have some people who are named as accused, and then there are some unknown. What more do we know?
1: Yes. So, Gaurav, remember the SIT, the Special Investigation Team of the UP government, had flagged a number of issues, which had included irregularities in counting, irregularities in the manner in which the record keeping, which was happening in Ayodhya of all the offerings, and even missing footage of the counting process, which was essentially the CCTV footage, were dysfunctional. Now, what the SIT, post the SIT, remember the SIT report was submitted to the Home Secretary only 48 hours ago, Gaurav. And now the details which have come in, and as you pointed out rightly, multiple sections of criminal conspiracy, but there is also an interesting section which perhaps the details would emerge in some time from now, of a possible civil servant. That's what it says. When we look at this particular section, and I will highlight that for you, Gaurav, it says, the section is 316.5 of the BNS, which says the criminal breach of trust by a public servant, banker, merchant, broker, attorney, or agent. Yes. And the punishment in this particular case is life imprisonment. Of the 8 people whose names are yet to surface, 5 names are known. Most of them are involved in the counting process. They were involved in the upkeep of the entire record keeping, which had to happen. That had not happened. One of them is the driver, or should I say the close aide of the General Secretary of the Trust. That is Tinnu Yadav. Tinnu Yadav worked as a driver to Champat Rai, and his name had surfaced much before other names, and that was there in the public domain. Other names are also important. That is also of Anukalp Mishra. His name has been found in the FIR, and that he was allegedly connected to the donation collection and also the counting operation which was happening in the premises of the Ram Temple in Ayodhya.
0: That's important point to make, Maria. Caesar's wife has to be above suspicion. But here, the driver of one of the most important men in the trust has been allegedly named in serious wrongdoings, in serious breach of trust. Stay with me for a moment. I want to bring in Anurag Bhadoria of the Samajwadi Party, who joins us on the special broadcast. Anurag Bhadoria, FIR to darj kar liya gaya hai, namzad FIR hai, 8 logon ke khilaaf hai, kai dharaye lagai gayi hain. Samajwadi Party, jisne ye prashn uthaya tha, is karyavahi se, ab tak ki karyavahi se, kya aap santusht hain? Kis roop mein aap ise dekhte hain?
2: तो इस बात को तो आप मान गए होंगे कि जो समाजवादी लोग कहते हैं, जो समाजवादी ने आवाज उठाई थी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह से कहा था कि आस्था में चोरी हो रही है और वहां पे दान पात्र में गड़बड़ी हो रही है, तो ये बात तो अब FIR हुई है तो कम से कम ये तो साबित हो गया कि वो सच बोल रहे थे। तो दूसरी बात, FIR हुई है, ड्राइवर पे तो हो गई। अब ड्राइवर की इतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती, ड्राइवर बिना जो ड्राइवर जिसका भी होगा तो मालिक के बिना सह पे तो ड्राइवर कुछ कर नहीं सकता। तो मैं तो चाहूंगा कि इसमें छोटे लोगों की जगह बड़े लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बड़े लोगों के बगैर छोटे लोग नहीं काम कर सकते। छोटे लोगों की क्या इतनी हिम्मत और क्या उनकी वो होगी, उनका ओहदा क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है उसमें। मैं तो चाहूंगा कोई इसमें बड़े हों या छोटे हों, कोई बचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रभु के आस्था का मामला है, ये हमारे सनातनियों का आस्था का मामला है।
0: ये बड़ी बात आप उठा रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा अनुराग भदौरिया, विस्तार से आपसे इस पर चर्चा भी करेंगे। आशीष श्रीवास्तव, माय कोलीग, नाउ जॉइंस मी फॉर मोर विद द लेटेस्ट फ्रॉम लखनऊ एंड अयोध्या ऑन दिस बिग स्टोरी। एंड आशीष, टिन्नू यादव द ड्राइवर हैज बीन नेम्ड, व्हाट वाज हिज रोल अकॉर्डिंग टू प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस, पॉइंट वन, एंड can it be restricted just to the driver without the person who was being driven, or was there backseat driving here?
3: आप गर्ग टिन्नू यादव जो एक बेहद महत्वपूर्ण नाम है इस पूरे प्रकरण में, चूंकि दान जो कथित चोरी का मामला था उसमें एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज में 8 लोगों के नामजद में टिन्नू यादव। आप समझ सकते हैं टिन्नू यादव वो शख्स है जो एक ब्रिज की तरह है, और ब्रिज की तरह इस वजह से भी है क्योंकि वह सीधे ट्रस्ट के लोगों के साथ में जुड़ा हुआ था और उसके पास इतनी अथॉरिटी थी कि वो ट्रस्ट के जो राम मंदिर के अंदर क्या होना है और कैसे होना है, मतलब ही वॉज जस्ट मैनेजिंग एवरीथिंग, सब कुछ वो मैनेज कर रहा था। और यही वजह है कि टिन्नू यादव के पास यहां तक जो वायरलेस सेट है वो तक रहता था कि वो कैसे पूरे वायरलेस पे सबको सूचित करता था कि कौन सी गाड़ी अंदर आनी है या कैसे आनी। तो कहीं ना कहीं उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर रखा गया था, उसको सारे एक्सेस दिए गए थे कि वो राम मंदिर में क्या एक्सेस होना है, तो ये ट्रस्ट के पदाधिकारियों के द्वारा ही दिए गए थे। और इसी वजह से उसकी इतनी कह सकते हैं कि जो बड़ी है इसकी जो पोजीशन बड़ी थी इसका, जो जिसने जिस तरीके से एक ड्राइवर होने के नाते भी उसने जो राम मंदिर के पूरे इस प्रकरण मामले में सबसे बड़ा रोल भी है उसी का। यही नहीं, जो 8 लोग और नामजद हैं इस पूरे मामले पर, तो कहीं ना कहीं सबकी भूमिका एसआईटी ने जो संतुष्टि की है वो बहुत ही बेहद सख्त रवैये के साथ की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्मली एसआईटी ने जांच करके की हो, एसआईटी ने जो इनिशियल स्टेज पे जांच की उसमें सख्त रवैया अपनाया और तब ये नाम दिए हैं। तो यानी कि जो जांच में सबूत मिले हैं वो एक एक सबूत फिल्टर करके सामने आ गया है कि कैसे भी इनको अब आगे बड़ी कार्रवाई हो, और इसी वजह से टिन्नू यादव का बहुत अहम हो जाता है इस पूरे मामले पे नाम।
4: अच्छा, टिन्नू यादव कहने को तो एक ड्राइवर
3: आ रहे थे।
4: नहीं आशीष, ये बताइए, टिन्नू यादव कहने को तो एक ड्राइवर है, लेकिन ड्राइवर की क्या इतनी चलती थी कि कहां से कैश कलेक्ट हो रहा है? मतलब ये तो श्रद्धालुओं का दान है, कोई गरीब बुढ़िया है वो 10 ही रुपए दान कर रही है, कोई बड़ा आदमी है जो 1-1 किलो की चांदी की ईंटें दान कर रहा है, और सिंधी समाज का तो कहना है कि उन्होंने 200 इस तरह की ईंटें दान की। वो जानना चाहते हैं उन ईंटों का क्या हुआ, उन्होंने कहा उन्हें रसीद नहीं दी गई। तो ये कौन है वो? एक ड्राइवर तो तय नहीं करेगा रसीद दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, इस पर क्या कोई सफाई या जानकारी मिल पाई आशीष?
3: आईटी देखिए, टिन्नू यादव चूंकि अहम रोल था और अभी जब एसआईटी ने जांच की है हम उसको शेयर भी करेंगे जो जो पॉइंटर्स एसआईटी ने बनाए हैं, लेकिन अभी शुरुआती जांच में जरूर आया है कि टिन्नू यादव को इतनी पावर दी गई थी कि वो बिल्कुल एक्सेस हर जगह कर सकता था, वो दान पात्र में क्या चीजें आ रही उसको देख सकता था, उसको आगे पीछे मैनेज कर सकता था। कहीं ना कहीं टिन्नू यादव के कंधे पर एक तरीके से एक पूरा जोर लगाया गया था कि वो सब कुछ मैनेज करे, चूंकि जो बड़े पदाधिकारी थे वो तो टिन्नू यादव के सहारे ही चल रहे थे, और टिन्नू यादव ऐसा शख्स था जो राम मंदिर के हर चीज को जानता था कि चांदी की वो कहां पर वो है, ईंटें कहां पर हैं, कैसे रखनी है, कहां पर जानी है, मतलब हर एक चीज की जानकारी थी उसको। और बिना सहमति के बिल्कुल टिन्नू यादव नहीं कर सकता, इसमें दो राय नहीं है, चूंकि वो एक मोहरे की तरीके से था और इसी वजह से उसको मोहरा बनाया गया था कि वो इन सब चीजों को मैनेज करे, क्योंकि वहां पर और भी पदाधिकारी हैं, फिर चाहे उसमें अब चंपत राय रहे हो, अनिल मिश्रा रहे हो, या इसके साथ गोपाल राहुल और सभी रहे हो वहां पर, उनकी सबकी जानकारी में इस चीज को भी कहीं ना कहीं कंसेंट दिखा है। और इसी वजह से जो एसआईटी ने जो नाम दर्ज किए हैं उसमें सभी अन्य लोगों के भी नाम दर्ज हैं, उसका भी खुलासा होगा। लेकिन ये अभी जिस तरीके से टिन्नू यादव के पास जो एक्सेस था वो आप ये समझ सकते हैं कि चाहे वो पास का हो, चाहे वो सीसीटीवी का हो, या इसके अलावा जो एक्सेस दान का है, यानी कि दान कितना आया है उसका रिकॉर्ड का है और ऊपर रिकॉर्ड किसको भेजना है वो रिकॉर्ड भी टिन्नू यादव रखता था। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में एसआईटी ने इस संलिप्तता को जरूर पाया है और उसी के बाद ये इतनी बड़ी जो एफआईआर है राम मंदिर मामले में चोरी में जो दान की उसमें दर्ज की गई है। ऐसे ही नहीं,
4: बड़ी बात आप बता रहे हैं, फॉर द बेनिफिट ऑफ व्यूअर्स हू आर जॉइनिंग अस, एन एफआईआर हैज नाउ बीन रजिस्टर्ड इन द श्री राम जन्मभूमि टेम्पल डोनेशन अलेज थेफ्ट केस। इट्स नॉट जस्ट पिल्फरेज, इज इट मैसिव मिस अप्रोप्रिएशन? डज इट रन इन टू क्रोर्स ऑफ रुपीज एज इज बींग अलेज्ड बाय सम? इट्स बिकम अ मैसिव पोलिटिकल केस। मोर डिटेल्स कमिंग इन, देर आर अपेरेंटली टू मोर नेम्स दैट हैव बीन नेम्ड इन द एफ आई आर, सुभाष एंड करुणेश, एंड आई विल गेट यू डिटेल्स अबाउट देयर अलेज्ड रोल। बट वॉट इज दिस इंटायर स्कैम ऑल अबाउट? There are allegations over donation, missing cash, missing gold jewelry, missing silver bricks, and now question over
0: alleged land deals. The controversy surrounding the Sri Ram Janmabhoomi Mandir is only becoming bigger. The special investigation team appointed by the Yogi Adityanath government has flagged serious procedural lapses. Political parties are now demanding a much wider probe. There are many who say that this is an investigation that should be carried out by the Central Bureau of Investigation and that it should be a court-monitored multi-agency probe. Even the Vishwa Hindu Parishad now is seeking an FIR, which has since been registered. We get you more in this report.
5: The shroud of secrecy over the donations made to the Ram Mandir in Ayodhya remains, with the Mandir Trust now refusing to comply with the PMO's directive seeking complete public disclosure of its finances, from donations and bank accounts to land transactions and assets. The man who blew the whistle to the PMO, BJP worker Rajni Singh, says that all he wants is a fair and transparent investigation because the issue concerns the faith of crores of devotees.
6: पारदर्शिता की मांग करना कहीं से आरोप नहीं होता है. आरोप विपक्षी लोग लगा रहे हैं. आरोप विपक्षी नैरेटिव सेट कर रहे हैं. तो वो नैरेटिव खत्म हो जाए, इसलिए पारदर्शिता जरूरी है.
5: The trust has refused to divulge the information, citing the ongoing SIT investigation set up by the Yogi government. But a day after the three-member special investigation team submitted its interim report, it seems that the probe has soon widened beyond just allegations of missing cash. The probe has reportedly found that employees handling cash donations were not subjected to adequate background verification. It also points to poor enforcement of dress code protocols meant to help identify authorized personnel inside sensitive areas. Investigators further claim that in some instances, employees deliberately positioned themselves in front of the CCTV cameras, potentially obstructing surveillance and enabling theft to go unnoticed. The SIT has also flagged negligence in the transportation of donation boxes from collection points, as well as serious lapses in procedures governing the movement of cash until its final deposit in bank accounts. Meanwhile, the controversy expanded beyond donations. Appearing before the panel, Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh alleged that land purchase using devotees' money was acquired at inflated prices and demanded that the SIT's mandate be expanded to include these land deals.
7: भाई एक ही दिन में आप एक जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं कुसुम पाठक हरीश पाठक से और उसमें गवाह कौन है ऋषिकेश उपाध्याय अनिल मिश्रा भाजपा का मेयर और ट्रस्ट का सदस्य और वही जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी बेच दे रहे हैं ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में 5 मिनट के बाद उसमें भी गवाह कौन है ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा इसका मतलब तो मिल के लूट रहे हैं ना 11 कुल सेट में मैंने कागजात दिए हैं जिसमें 13 जमीनों के दस्तावेज हैं और इसकी गहनता से जांच होगी सारे लोग जेल जाएंगे ये जितने बेईमान हैं
5: With Singh's party leader Arvind Kejriwal demanding a CBI or ED probe ahead of his Ayodhya visit, the issue is becoming a political headache for the ruling state government.
8: लोगों ने जो बहुत भावना के साथ भगवान को हीरे ज्वारा चढ़ाए थे वो चोरी कर लिए 200 करोड़ रुपए तक का बता रहे हैं कैश चोरी कर लिया किसी ने 200 किलो चांदी दी थी वो चोरी कर ली जिस तरह की खबरें आ रही हैं वहां से श्री राम मंदिर जी के में से उससे दिल बहुत आहत है
5: And what is adding to pressure on the Yogi government is that even the VHP has now entered a debate.
9: हमारा सुझाव है कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो हिंदू समाज को ये दिखेगा कि दोषी न्यायालय से दंडित होकर जेल गए हैं तब उनको संतोष होगा
5: Facing the heat, the Yogi government has reiterated that nobody guilty of cheating Hindus of their faith will be spared. What began as allegations of irregularities in the handling of donations and offerings at the Ram Mandir has now snowballed into one of the biggest controversies surrounding Ayodhya since the temple's consecration. Bureau Report, India Today.

0: by some unknown people, don't know whether it is the private people or the people of the authority. The paint has been done on this and that particular message has been removed. Now, if you'll see in the visuals, this is the particular gate of the entry. As per the rules, there has to be an emergency exit also. The passage has to be wider than this. Now, you'll have a look. Now, this is the seal of Kanpur Development Authority, which was placed just yesterday, but only after a few hours it has been torn apart by the people itself.
1: Then came another twist. The Kanpur Development Authority denied ever sealing the premises. Its official stand, only a notice had been issued.
2: जैसा लखनऊ में एक दुखद घटना हुई थी उसके बाद प्राधिकरण कानपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से भी एक विशेष अभियान जो है चलाया जा रहा है और इसमें हम लोग जो है कल से ये प्रयास कर रहे हैं कि पहले हम लोग संबंधित जो है बिल्डिंग को एक बार नोटिस दे दें, नोटिस देने के बाद जो है उसको सुधार का एक अवसर दे दें, अगर वो सुधार नहीं कर रहा है तो उसको ऊपर से भविष्य में सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
1: The opposition alleges political pressure forced the administration to retreat.
3: ये कौन सा कानून है कि जहां पर 15-15 बच्चों की जान जा रही है और सरकार के बड़े बैठे अहदेदारों के परिवारों को ये छूट दी जा रही है, पहले सील लग रही है और फिर सील खुल रही है, तो इससे साफ पता चल रहा है कि अधिकारी भी दबाव में हैं।
4: आपका कानून क्या सिर्फ ये 22 घंटे 23 घंटे के एक दिखावे के लिए है क्या?
1: लखनऊ वाज मेंट टू बी द वार्निंग बट इट सीम्स सेफ्टी विल ऑलवेज बी सेकंड टू सिफारिश इन इंडिया व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद वीआईपीस। With Simha Chawla in Kanpur, Bureau Report, India Today.
5: Okay, from that story, let's turn to some good news. From apples and kiwis to saffron and medicinal herbs, one man in Kashmir is turning his rooftop into a thriving organic farm. Meet Harun Rashid from Shopia, whose innovative terrace farming model is drawing attention. Take a look.
6: Organic farm on terrace cultivating many varieties of fruits, vegetables and medicinal plants. Harun Rashid's innovations in farming has made him popular in Shopia. Rashid, who started terrace farming in 2017, has transformed his rooftop into a flourishing agricultural space using chemical-free and environmentally sustainable practices.
7: तो जो हमारा ये टेरिस गार्डन है ये 40x42 स्क्वायर फुट पर हमने ये सब्जियां लगाई। इसमें एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर और खासकर जो मेडिसिन प्लांट, हमने 3 सालों से ये मेडिसिन प्लांट और हॉर्टिकल्चर इसमें इस्तेमाल किया। बाकी जो हमारे पास वैरायटी है ये करीब 100 एबो वैरायटीज है।
6: Rashid's terrace farm features a diverse collection of crops, including unique apple varieties, cherries, kiwis, oranges, lemons, and several medicinal plants. He successfully cultivated saffron, which is usually grown in Pampore region.
7: Saffron, jo hai, ye aasan hai kyunki district Shopian mein yahan jo horticulture hai, isme log nahi laga sakte. हमने ट्राई किया, यहाँ जमीन में पैदावार खूब होगा, ये जो बनाएगा होगा, क्योंकि हमने यहाँ टेरिस गार्डन में आपने देखा तो हमें कामयाबी मिला। अभी आज भी हमने एक ट्रायल किया, ये सैफरान कारण आज भी लगाया हमने देखा, हमें देखना है कि इसमें कितना पैदावार प्रोडक्शन हमें मिलेगा।
8: तो लोगों में भी अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है कि हम जो ये पेस्टिसाइड बेस्ड जो जितनी भी सब्जियां हम नहीं खाना चाहते हैं, तो उसका अल्टरनेटिव हमने यही देखा कि जिन लोगों के पास टेरेसेस है उन टेरेसेस को क्यों ना यूटिलाइज किया जाए। तो इसका जो मेन मकसद था, हमने इसको कैपेक्स में जैसे आरकेवीवाई जो स्कीम्स गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही हैं उनमें थोड़ा सा इसको असिस्टेंस दी, मगर जो बेसिक चीज है कि इस फार्मर ने खुद से अपनी मेहनत की।
6: Rashid says he has received full support from various government departments for all his endeavors. With Irshad Malik, Bureau Report, India Today.
5: Nice to always get some good news stories, but I want to leave you tonight with something that's not so good news. 2 strong earthquakes striking Venice.

0: Good evening, you're watching India First. I'm Gaurav Savant. Big story coming in. It's a major development in the Sri Ram Janmabhoomi Temple alleged donation theft case. Based on the preliminary report filed by the special investigation team, an FIR has finally been registered in the Sri Ram Janmabhoomi donation theft scam. 8 people have been named in this FIR, apart from several unnamed individuals. Latest information that is coming in, those who've been named in the FIR are those who were allegedly responsible for counting that money, alleged handling of the donation funds, the movement, some who were apparently not properly following the dress code at the Sri Ram Janmabhoomi Temple Money Counting Center. Avinash Shukla, Anukalp Mishra, Manish Yadav, Ramashankar Mishra, Tinu Yadav, Ramashankar Yadav. These are some of the individual sources tell India Today. They've been named in the FIR. This is the first information report. The 3-member SIT had travelled to the Sri Ram Janmabhoomi temple where the money was collected, where was that money counted, what was the movement, what was the role of the State Bank of India officials, who had they in turn allegedly sublet or given the process of counting and transportation of money to. All of that has painstakingly been put together. The FIR has been filed on the complaint of the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust. So the trust finally moved to have an FIR on the basis of the SIT preliminary report. The FIR has been registered under section 306. This is theft by a clerk or a servant. Under section 3165, this is criminal breach of trust by a public servant or banker or merchant or attorneys or their agents. Under section 317-4, which is habitually receiving or dealing in stolen property, knowing it to be stolen. So now with this FIR, and perhaps this is where the agyat or the unknown become extremely interesting. Who were the unknowns who received proceeds of crime? Because this is a huge breach of trust in the faith that devotees had. They donated to the temple. And then there are staff and those who are handling the donation who stand accused of pilfering the donation. And it's not just cash. Do keep in mind that it is apart from cash, there is also the allegation that silver, gold and other precious jewels that were donated to the temple, silver bricks that were donated to the temple, were they properly audited? Have they been kept? Have they been used? Or is there merit that this was more than just pilferage of just a few hundred or thousand or crore rupees? This is a much bigger scam. And this investigation hopefully will reveal the truth. Because Section 317-5 is assisting in concealing, disposing of or making away with stolen property. And that's a very serious charge. Again, it comes read with Section 61, which is criminal conspiracy, and Section 3-5, which is common intent, because it's more than one person, it's more than one individual, it's a group of people who came together with a common intent to commit a crime. And this is a very serious crime. This actually is sin. But look at the Bharat Nyay Sahita. When you go with the Dand Sahita and the Nyay Sahita, there was common intent, joint criminal liability. The Uttar Pradesh police say there will be arrests and strict action will be taken. This preliminary action, the registration of the FIR on the basis of the special investigation team report, is just that very important step one that's been taken so far. It's been taken on the basis of certain facts that have been revealed in the preliminary investigations. All eyes now on the SIT returning to Ayodhya. When the SIT returns to Ayodhya, they will then, and a much bigger team now gets roped in. We are told there are officials of multiple departments that are being roped in to carry out a much wider investigation. Where did this cash go? Where did that silver jewelry, gold jewelry, precious jewels, where did all of all of that proceeds of crime, where did they go? Who sold it? Who bought it? Did they buy very expensive property with this? All of that is a matter of investigation. I quickly want to cut across to my colleague Maria Shakil, joining us with the latest on this big story. Maria, what more do we know on the basis of the SIT? An FIR has been registered. The details of the accused. Now you have some people who are named as accused, and then there are some unknown. What more do we know?
1: Yes. So, Gaurav, remember the SIT, the Special Investigation Team of the UP government, had flagged a number of issues, which had included irregularities in counting, irregularities in the manner in which the record keeping, which was happening in Ayodhya of all the offerings, and even missing footage of the counting process, which was essentially the CCTV footage, were dysfunctional. Now, what the SIT, post the SIT, remember the SIT report was submitted to the Home Secretary only 48 hours ago, Gaurav. And now the details which have come in, and as you pointed out rightly, multiple sections of criminal conspiracy, but there is also an interesting section which perhaps the details would emerge in some time from now, of a possible civil servant. That's what it says. When we look at this particular section, and I will highlight that for you, Gaurav, it says the section is 316.5 of the BNS, which says the criminal breach of trust by a public servant, banker, merchant, broker, attorney or agent. Yes. And the punishment in this particular case is life imprisonment. Of the 8 people whose name are yet to surface, 5 names are known. Most of them are involved in the counting process. They were involved in the upkeep of the entire record keeping, which had to happen. That had not happened. One of them is the driver, or should I say the close aide of the General Secretary of the Trust. That is Tinnu Yadav. Tinnu Yadav worked as a driver to Champat Rai, and his name had surfaced much before other names, and that was there in the public domain. Other names are also important. That is also of Anukalp Mishra. His name has been found in the FIR, and that he was allegedly connected to the donation collection and also the counting operation which was happening in the premises of the Ram Temple in Ayodhya.
0: That's important point to make, Maria. Caesar's wife has to be above suspicion, but here the driver of one of the most important men in the trust has been allegedly named in serious wrongdoings, in serious breach of trust. Stay with me for a moment. I want to bring in Anurag Bhadauria of the Samajwadi Party, who joins us on the special broadcast. Anurag Bhadauria, FIR to darj kar liya gaya hai, namzad FIR hai, 8 logon ke khilaaf hai, kai dharaye lagai gayi hain. Samajwadi Party, jisne ye prashn uthaya tha, is karyawahi se, ab tak ki karyawahi se, kya aap santusht hain? Kis roop mein aap ise dekhte hain?
2: तो इस बात को तो आप मान गए होंगे कि जो समाजवादी लोग कहते हैं, जो समाजवादी ने आवाज उठाई थी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह से कहा था कि आस्था में चोरी हो रही है और वहां पे दान पात्र में गड़बड़ी हो रही है, तो ये बात तो अब FIR हुई है तो कम से कम ये तो साबित हो गया कि वो सच बोल रहे थे। तो दूसरी बात, FIR हुई है, ड्राइवर पे तो हो गई। अब ड्राइवर की इतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती, ड्राइवर बिना जो ड्राइवर जिसका भी होगा तो मालिक के बिना सह पे तो ड्राइवर कुछ कर नहीं सकता। तो मैं तो चाहूंगा कि इसमें छोटे लोगों की जगह बड़े लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बड़े लोगों के बगैर छोटे लोग नहीं काम कर सकते। छोटे लोगों की क्या इतनी हिम्मत और क्या उनकी वो होगी, उनका औहदा क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है उसमें। मैं तो चाहूंगा कोई इसमें बड़े हों या छोटे हों, कोई बचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रभु के आस्था का मामला है, ये हमारे सनातनियों का आस्था का मामला है।
0: ये बड़ी बात आप उठा रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा अनुराग भदौरिया, विस्तार से आपसे इस पर चर्चा भी करेंगे। आशीष श्रीवास्तव, माय कोलीग, नाउ जॉइंस मी फॉर मोर विद द लेटेस्ट फ्रॉम लखनऊ एंड अयोध्या ऑन दिस बिग स्टोरी। एंड आशीष, टिन्नू यादव द ड्राइवर हैज बीन नेम्ड, व्हाट वाज हिज रोल अकॉर्डिंग टू प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस, पॉइंट वन, एंड can it be restricted just to the driver without the person who was being driven, or was there backseat driving here?
3: आप गर्ग टिन्नू यादव जो एक बेहद महत्वपूर्ण नाम है इस पूरे प्रकरण में, चूंकि दान जो कथित चोरी का मामला था उसमें एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज में 8 लोगों के नामजद में टिन्नू यादव, आप समझ सकते हैं टिन्नू यादव वो शख्स है जो एक ब्रिज की तरह है और ब्रिज की तरह इस वजह से भी है क्योंकि वह सीधे ट्रस्ट के लोगों के साथ में जुड़ा हुआ था और उसके पास इतनी अथॉरिटी थी कि वो ट्रस्ट के जो राम मंदिर के अंदर क्या होना है और कैसे होना है, मतलब ही वॉज जस्ट मैनेजिंग एवरीथिंग, सब कुछ वो मैनेज कर रहा था और यही वजह है कि टिन्नू यादव के पास यहां तक जो वायरलेस सेट है वो तक रहता था कि वो कैसे पूरे वायरलेस पे सबको सूचित करता था कि कौन सी गाड़ी अंदर आनी है या कैसे आनी, तो कहीं ना कहीं उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर रखा गया था, उसको सारे एक्सेस दिए गए थे कि वो राम मंदिर में क्या एक्सेस होना है, तो ये ट्रस्ट के पदाधिकारियों के द्वारा ही दिए गए थे और इसी वजह से उसकी इतनी कह सकते हैं कि जो बड़ी है इसकी जो पोजीशन बड़ी थी इसका, जो जिसने जिस तरीके से एक ड्राइवर होने के नाते भी उसने जो राम मंदिर के पूरे इस प्रकरण मामले में सबसे बड़ा रोल भी है उसी का, यही नहीं जो 8 लोग और नामजद हैं इस पूरे मामले पर, तो कहीं ना कहीं सबकी भूमिका एसआईटी ने जो संतुष्टि की है वो बहुत ही बेहद सख्त रवैये के साथ की है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्मली एसआईटी ने जांच करके की हो, एसआईटी ने जो इनिशियल स्टेज पे जांच की उसमें सख्त रवैया अपनाया और तब ये नाम दिए हैं, तो यानी कि जो जांच में सबूत मिले हैं वो एक एक सबूत फिल्टर करके सामने आ गया है कि कैसे भी इनको अब आगे बड़ी कार्रवाई हो और इसी वजह से टिन्नू यादव का बहुत अहम हो जाता है इस पूरे मामले पे नाम।
4: अच्छा, टिन्नू यादव कहने को तो एक ड्राइवर
3: नहीं आ रहे थे,
4: नहीं आशीष ये बताइए, टिन्नू यादव कहने को तो एक ड्राइवर है लेकिन ड्राइवर की क्या इतनी चलती थी कि कहां से कैश कलेक्ट हो रहा है, मतलब ये तो श्रद्धालुओं का दान है, कोई गरीब बुढ़िया है वो 10 ही रुपए दान कर रही है, कोई बड़ा आदमी है जो 1-1 किलो की चांदी की ईंटें दान कर रहा है और सिंधी समाज का तो कहना है कि उन्होंने 200 इस तरह की ईंटें दान की, वो जानना चाहते हैं उन ईंटों का क्या हुआ, उन्होंने कहा उन्हें रसीद नहीं दी गई, तो ये कौन है वो, एक ड्राइवर तो तय नहीं करेगा रसीद दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, इस पर क्या कोई सफाई या जानकारी मिल पाई आशीष?
3: आईटी देखिए टिन्नू यादव चूंकि अहम रोल था और अभी जब एसआईटी ने जांच की है हम उसको शेयर भी करेंगे जो जो पॉइंटर्स एसआईटी ने बनाए हैं, लेकिन अभी शुरुआती जांच में जरूर आया है कि टिन्नू यादव को इतनी पावर दी गई थी कि वो बिल्कुल एक्सेस हर जगह कर सकता था, वो दान पात्र में क्या चीजें आ रही उसको देख सकता था, उसको आगे पीछे मैनेज कर सकता था, कहीं ना कहीं टिन्नू यादव के कंधे पर एक तरीके से एक पूरा जोर लगाया गया था कि वो सब कुछ मैनेज करे, चूंकि जो बड़े पदाधिकारी थे वो तो टिन्नू यादव के सहारे ही चल रहे थे और टिन्नू यादव ऐसा शख्स था जो राम मंदिर के हर चीज को जानता था कि चांदी की वो कहां पर वो है, ईंटें कहां पर हैं, कैसे रखनी है, कहां पर जानी है, मतलब हर एक चीज की जानकारी थी उसको और बिना सहमति के बिल्कुल टिन्नू यादव नहीं कर सकता, इसमें दो राय नहीं है, चूंकि वो एक मोहरे की तरीके से था और इसी वजह से उसको मोहरा बनाया गया था कि वो इन सब चीजों को मैनेज करे, क्योंकि वहां पर और भी पदाधिकारी हैं, फिर चाहे उसमें अब चंपत राय रहे हो, अनिल मिश्रा रहे हो या इसके साथ गोपाल राहुल और सभी रहे हो वहां पर, उनकी सबकी जानकारी में इस चीज को भी कहीं ना कहीं कंसेंट दिखा है और इसी वजह से जो एसआईटी ने जो नाम दर्ज किए हैं उसमें सभी अन्य लोगों के भी नाम दर्ज हैं उसका भी खुलासा होगा, लेकिन ये अभी जिस तरीके से टिन्नू यादव के पास जो एक्सेस था वो आप ये समझ सकते हैं कि चाहे वो पास का हो, चाहे वो सीसीटीवी का हो या इसके अलावा जो एक्सेस दान का है, यानी कि दान कितना आया है उसका रिकॉर्ड का है और ऊपर रिकॉर्ड किसको भेजना है वो रिकॉर्ड भी टिन्नू यादव रखता था, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में एसआईटी ने इस संलिप्तता को जरूर पाया है और उसी के बाद ये इतनी बड़ी जो एफआईआर है राम मंदिर मामले में चोरी में जो दान की उसमें दर्ज की गई है, ऐसे ही नहीं
4: बड़ी बात आप बता रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ व्यूअर्स हू आर जॉइनिंग अस, एन एफआईआर हैज नाउ बीन रजिस्टर्ड इन द श्री राम जन्मभूमि टेम्पल डोनेशन अलेज थेफ्ट केस, इट्स नॉट जस्ट पिल्फरेज, इज इट मैसिव मिस अप्रोप्रिएशन, डज इट रन इन टू क्रोर्स ऑफ रुपीज एज इज बींग अलेज्ड बाय सम, इट्स बिकम अ मैसिव पोलिटिकल केस, मोर डिटेल्स कमिंग इन, देर आर अपेरेंटली टू मोर नेम्स दैट हैव बीन नेम्ड इन द एफ आई आर, सुभाष एंड करुणेश, एंड आई विल गेट यू डिटेल्स अबाउट देयर अलेज्ड रोल, बट वॉट इज दिस इंटायर स्कैम ऑल अबाउट? There are allegations over donation, missing cash, missing gold jewelry, missing silver bricks, and now question over
0: alleged land deals. The controversy surrounding the Sri Ram Janmabhoomi Mandir is only becoming bigger. The special investigation team appointed by the Yogi Adityanath government has flagged serious procedural lapses. Political parties are now demanding a much wider probe. There are many who say that this is an investigation that should be carried out by the Central Bureau of Investigation and that it should be a court-monitored multi-agency probe. Even the Vishwa Hindu Parishad now is seeking an FIR, which has since been registered. We get you more in this report.
5: The shroud of secrecy over the donations made to the Ram Mandir in Ayodhya remains, with the Mandir Trust now refusing to comply with the PMO's directive seeking complete public disclosure of its finances, from donations and bank accounts to land transactions and assets. The man who blew the whistle to the PMO, BJP worker Rajni Singh, says that all he wants is a fair and transparent investigation because the issue concerns the faith of crores of devotees.
6: पारदर्शिता की मांग करना कहीं से आरोप नहीं होता है. आरोप विपक्षी लोग लगा रहे हैं. आरोप विपक्षी नैरेटिव सेट कर रहे हैं. तो वो नैरेटिव खत्म हो जाए, इसलिए पारदर्शिता जरूरी है.
5: The trust has refused to divulge the information, citing the ongoing SIT investigation set up by the Yogi government. But a day after the three-member special investigation team submitted its interim report, it seems that the probe has soon widened beyond just allegations of missing cash. The probe has reportedly found that employees handling cash donations were not subjected to adequate background verification. It also points to poor enforcement of dress code protocols meant to help identify authorized personnel inside sensitive areas. Investigators further claim that in some instances, employees deliberately positioned themselves in front of the CCTV cameras, potentially obstructing surveillance and enabling theft to go unnoticed. The SIT has also flagged negligence in the transportation of donation boxes from collection points, as well as serious lapses in procedures governing the movement of cash until its final deposit in bank accounts. Meanwhile, the controversy expanded beyond donations. Appearing before the panel, Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh alleged that land purchase using devotees' money was acquired at inflated prices and demanded that the SIT's mandate be expanded to include these land deals.
7: भाई एक ही दिन में आप एक जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं कुसुम पाठक हरीश पाठक से, और उसमें गवाह कौन है? ऋषिकेश उपाध्याय, अनिल मिश्रा, भाजपा का मेयर और ट्रस्ट का सदस्य. और वही जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी बेच दे रहे हैं ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में 5 मिनट के बाद. उसमें भी गवाह कौन है? ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा. इसका मतलब तो मिल के लूट रहे हैं ना. 11 कुल सेट में मैंने कागजात दिए हैं जिसमें 13 जमीनों के दस्तावेज हैं, और इसकी गहनता से जांच होगी, सारे लोग जेल जाएंगे ये जितने बेईमान हैं.
5: With Singh's party leader Arvind Kejriwal demanding a CBI or ED probe ahead of his Ayodhya visit, the issue is becoming a political headache for the ruling state government.
8: लोगों ने जो बहुत भावना के साथ भगवान को हीरे ज्वारा चढ़ाए थे वो चोरी कर लिए, 200 करोड़ रुपए तक का बता रहे हैं कैश चोरी कर लिया, किसी ने 200 किलो चांदी दी थी वो चोरी कर ली, जिस तरह की खबरें आ रही हैं वहां से श्री राम मंदिर जिसके में से, उससे दिल बहुत आहत है.
5: And what is adding to pressure on the Yogi government is that even the VHP has now entered a debate.
9: हमारा सुझाव है कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो. हिंदू समाज को ये दिखेगा कि दोषी न्यायालय से दंडित होकर जेल गए हैं, तब उनको संतोष होगा.
5: Facing the heat, the Yogi government has reiterated that nobody guilty of cheating Hindus of their faith will be spared. What began as allegations of irregularities in the handling of donations and offerings at the Ram Mandir has now snowballed into one of the biggest controversies surrounding Ayodhya since the temple's consecration. Bureau Report, India Today.
0: Let me now get you more details. Eight names have been mentioned in the FIR in the Sri Ram Mandir alleged donation theft case. The names that India Today has been able to access include the names of Subhash, Karunesh, Avinash Shukla, Anukalp Mishra. Anukalp Mishra, incidentally, is the one of the employees who is handling the cash. Manish Yadav, Ramashankar Mishra, Ramashankar Yadav. Ramashankar Yadav, incidentally, is Champat Rai's driver, Tinnu Yadav, the man who had unprecedented access virtually to every part of the temple, including, according to initial investigations, to the cash collection site. And of course, Lovekush Mishra, another individual who was handling cash. Now, there are multiple questions that are being asked. Why were ad hoc people permitted to handle this situation? Why weren't the permanent employees the only ones, and the systems of checks and balances that there should be people from three different departments, CCTV cameras everywhere, multiple locks on donation centers to be put at the donation center, verified here, then the keys one set at the temple, the other set only at the bank, again two different sets of keys. There were many points that were raised, many points that were suggested. The big question is, why were they not followed? Why ad hocism? We'll be tracking that story very, very closely. Now that an FIR has been registered, let's hope action is taken, and not just against the cash handlers and the drivers. If it goes much higher, then the investigations with evidence need to punish and prosecute all those who are allegedly involved in this. We'll be tracking that story. But I now want to shift focus to the other big story we're tracking here on India First. Big news coming in the Punjab Chief Minister Bhagwant Mann alleged sacrilege controversy. India Today has access to a copy of the forensic findings that the Bhagwant Mann government in Punjab has relied upon to question the authenticity of that controversial viral video. The Gurugram police, however, claim that the Punjab government forensic report is fake. It does not come from any government laboratory, and people apparently were paid, that's the allegation, to put together such a report. Two people have also been taken into custody. I'll get you much more on the story. But first, let me get you details of the report that the Bhagwant Mann government is relying on. The Aam Aadmi Party claims a technical examination of the so-called viral video found indications of post-production editing and multi-layer composition. The analysis claims the video appears to contain multiple visual layers, overlays and graphic elements, suggesting it may not be raw, unedited or unaltered recording. This is the claim of the Bhagwant Mann government. But the question that is being asked, which government-approved forensic lab did this report come from? What kind of forensic analysis was done on this? Was it a government-recognized forensic laboratory? The Bhagwant Mann government report also points to inconsistencies detected during what they claim is a frame-by-frame examination, including variation in certain visual elements and differences in the presentation of the subject and the background. The findings also raise questions about the authenticity of the video, although the report stops short of drawing any final conclusion whether the video is genuine or fabricated. However, the sting is in the tail. The Gurugram police have made sensational claims in its investigations into this suspected creation of the forged forensic report link controversy. According to the police, a man who identified himself as Jaspreet approached investigators claiming that he was contacted, put under pressure and threatened by certain officials of the Punjab police or the Punjab administration in connection with a video involving the Punjab Chief Minister. He allegedly told the police that he was asked to procure a forensic report tailored for specific requirements, tailor-made to meet certain requirements. Investigators claim Jaspreet then contacted two individuals, Arun and Ankit. Arun allegedly generated a fabricated report in the name of an entity called Siberia, while Ankit is accused of producing a fake report or another fake report. The police further insist that neither of the so-called cyber laboratories are recognized or accredited to any government authority, and that these entities exist only on paper and not on ground. According to investigators, Jaspreet received a sum of 10 lakh rupees in exchange of arranging these tailor-made reports for the Punjab government. That is the claim. Listen in to the explosive claims of the police.
10: इसमें जसप्रीत नाम के व्यक्ति ने कंप्लेंट दी थी कि उसके ऊपर कुछ पंजाब के अधिकारियों ने कॉल किया और उसके ऊपर दबाव बनाया, उसको धमकी दी कि भाई कोई जो कि वीडियो है पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री की, कि उसमें उनको अपने हिसाब से कोई रिपोर्ट चाहिए थी, जो इस पे दबाव बनाया गया वो रिपोर्ट बनवाने के लिए जो जसप्रीत को कोई होटल गुड़गांव में होटल में बुलाया गया था उसमें ये सब डील हुई थी। उस होटल की भी हमने सीसीटीवी फुटेज ले ली है, उसका उसको एनालाइज किया जा रहा है, उसमें जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। जो कि इसमें अंकित और अरुण को हमने 8 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन में उनसे पूछताछ की जा रही है। जहां से उसने रिपोर्ट, ये फेक रिपोर्ट जहां जहां से उन्होंने बनाई थी, जिस भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी उसने यूज किए थे या कहां से बनाई थी, वो हम इसमें इन्वेस्टिगेशन में आगे चीज सामने आई।
0: आई वांट टू क्विकली ब्रिंग इन इंडिया टुडेज अरविंद ओझा, हुज बीन ट्रैकिंग द स्टोरी वेरी क्लोजली। गुड़गांव पुलिस की जांच में क्या निकला है? ये जो जो रिपोर्ट भगवंत मान सरकार दिखा रही है, ये किस फॉरेंसिक लेबोरेटरी में ये रिपोर्ट तैयार की गई है? कुछ तथ्य निकल कर आ पा रहे हैं अरविंद?
11: बिल्कुल, देखिए 2 दिन से गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन आज पहली बार गुरुग्राम पुलिस के जो एसीपी क्राइम है उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला कि पंजाब के अधिकारी वो आए थे जसप्रीत नाम के एक शख्स से मिले और बोला गया कि जो सीएम है उनका एक वीडियो वायरल हुआ, उसको लेकर रिपोर्ट बनानी है और रिपोर्ट उनके हिसाब से बनानी है, जिसके बाद 10 लाख रुपये उसको मिले और उसके बाद उसने जो अंकित और अरुण नाम के शख्स को दिया और उसके बाद दोनों ने फेक रिपोर्ट तैयार की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो दो लैब का नाम मेंशन है वो दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करते। एक जगह दिल्ली में जहां का एड्रेस है वहां पर इंडिया टुडे की टीम भी पहुंची, जहां पर कोई इस तरह का लैब नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जो अरुण और अंकित जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी नहीं है और साथ ही साथ उनको उनको लैब का, फॉरेंसिक लैब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो कुल मिलाकर गुरुग्राम पुलिस का यह कहना है कि पूरी तरह से फेक रिपोर्ट तैयार की, पंजाब के कुछ अधिकारी आए थे, जो जसप्रीत जिसको 10 लाख रुपए मिले उसका अकाउंट फ्रीज किया गया है, साथ ही साथ गुरुग्राम के जिस होटल में पंजाब के जो अधिकारी आए थे और जो अक्यूज थे उनके साथ जो मीटिंग थी उसका सीसीटीवी है उसको भी सीज किया गया है। तो गुरुग्राम पुलिस का यह दावा है कि जो भगवंत मान का जो वीडियो वायरल हुआ था उसको लेकर फेक रिपोर्ट बनाने के लिए पंजाब के अधिकारियों ने कहा था, उसको लेकर 10 लाख रुपए में।
0: बेहद गंभीर बात, बेहद गंभीर बात। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, ताजा जानकारी के लिए फिर आपके पास लौटूंगा। इट्स अ कंट्रोवर्सी दैट्स एक्चुअली स्नोबॉल्ड इनटू अ मेजर पॉलिटिकल एंड अ रिलीजियस फ्लैश पॉइंट इन द सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट ऑफ पंजाब। द भगवंत मान and he's the chief minister of Punjab, the alleged sacrilege controversy has triggered a fierce battle. Now, it involves the Akal Takht Sahib, competing forensic reports, a police investigation into alleged forged evidence and mounting calls from the opposition for Chief Minister Bhagwant Mann's resignation. And at the heart of the controversy is that viral video that has hurt sentiments of the brave Sikhs across the world. While the Akal Takht Sahib has relied on the forensic findings that allegedly found no signs of manipulation, no signs of use of artificial intelligence, Bhagwant Mann as Chief Minister rejected what was being said. He insists the video is fake and it's part of a much wider political conspiracy to defame him. We get you more in this report.
12: It is as much an issue of faith as it is political. And with Punjab headed for assembly elections next year, the sacrilege row involving Chief Minister Bhagwant Mann has exploded into one of the state's biggest political flashpoints. Facing mounting calls for his resignation, Mann has hit back strongly, insisting that the video at the heart of the controversy is fake and part of a larger conspiracy to malign him.
13: ਧਾਰਮਿਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ।
12: In a dramatic counter-offensive, the Punjab Chief Minister played a video during his press conference, claiming that the controversial clip was fabricated using advanced technology and a highly realistic face mask.
13: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆ ਗਈ ਦੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਆਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੂਪਹੋਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਲੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਪਲਟ ਦਾਂਗੇ। ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਕਿਹਨੇ ਬਣਵਾਈ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ।
12: Meanwhile, the Gurugram probe into the alleged forgery of forensic reports has thrown up sensational claims. Investigators say a man was paid 10 lakh rupees to create and circulate a fake video. Two people have already been arrested in connection with the case.
10: Isme Jaspreet naam ke vyakti ne complaint di thi ki uske upar kuch Punjab ke adhikariyon ne call kiya aur uske upar dabav banaya, usko dhamki di padosi rajya ke mukhyamantri ki कि उसमें उनको अपने हिसाब से कोई रिपोर्ट चाहिए थी जो इस पे दबाव बनाया गया, और रिपोर्ट बनवाने के लिए जो जसप्रीत को कोई होटल गुड़गांव में होटल में बुलाया गया था, उसमें ये सब डील हुई थी।
12: The opposition therefore remains unconvinced as they continue to demand Bhagwant Mann's resignation, alleging that he not only hurt Sikh religious sentiments but also attempted to cover up the controversy.
14: Bhagwant Mann का जो असली बेअदबी वीडियो है, उसके सच को छुपाने के लिए जिस प्रकार से एक फर्जी फैब्रिकेटेड फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाने का पाप भगवंत मान और पंजाब सरकार ने किया है, उसका भांडा फूट चुका है। जिनके मन में थोड़ी सी शंका थी, शक था, डाउट था कि क्या ये बेअदबी वीडियो असली है या एआई जनरेटेड है, फेक है, आज उनके मन से भी तमाम डाउट और शक दूर हो गए।
15: जेड़ा है ने ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
12: Whether the viral sacrilege video is genuine or fabricated remains fiercely contested. What is beyond dispute, however, is that the controversy has landed at the doorstep of Bhagwant Mann and the Aam Aadmi Party at a time when Punjab and the party is already gearing up for a high-stakes electoral battle. Bureau Report, India Today.
0: Somnath Bharti is senior leader of the Aam Aadmi Party and former law minister of Delhi. He joins us on the show. Also with me is Shehzad Poonawala, national spokesperson of the BJP. Shashi Kant is former DGP of Punjab. Mahesh Inder Singh Grewal is senior vice president of the Shiromani Akali Dal, former cabinet minister of Punjab. Welcome.